सुप्रभात। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज रविवार है, शक संबत 1948 के श्रावण मास की चौथी तिथि, तदनुसार दिनांक 26 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 53 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी सीजीपे ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर 5वां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और

0: पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

मीरा से प्रश्न किया कि मैंने लीनो गोविंद मोल, अर्थ हुआ कि मोल लिया है। जब भी कुछ खरीदा जाता है तो कुछ मूल्य चुकाया जाता है, तो अगर गोविंद खरीदा है तो उसका मूल्य क्या था, क्या चुकाया उसके बदले में? तो मीरा का भक्तिपूर्ण उत्तर सुनिए।

हे हरि, तुम भले ही मुझसे मुख मोड़ लो, पर मैं तो केवल आपकी ही दासी हूँ। मैं सदा से आपकी हूँ, चाहे आप स्वीकारो अथवा न स्वीकारो।

परमात्मा के विभिन्न रूप हैं, कई स्वरूप हैं। कहीं वो निराकार ही सर्वस्व है और कहीं अपने सुंदर साकार रूप से सबको मोह लेता है। वो जैसा भी है, उसके भजन में ही सभी प्राणियों का तन मन अगर लग जाए तो वो पावन होकर नई स्फूर्ति और बल को प्राप्त करता है।

गोविंद, ग्वाल बाल, राधा रानी और उनकी सखियां, इन सब के द्वारा ही ब्रज की सारी लीलाएं संपन्न होती हैं। और ये सभी गोप गोपिकाएं अपने प्रिय लाडले श्री राधा कृष्ण की परम प्रसन्नता के लिए प्रत्येक लीला में प्रभु के सहयोगी सिद्ध होते हैं। कभी माखन चोरी, तो कभी मुंदरी चोरी, और कभी वंशी चोरी।

आज के कार्यक्रम में भक्ति रचनाओं को आपने सुना अनूप जलोटा, पीनाज मसानी, उदित नारायण, लता मंगेशकर के स्वरों में, और ये देशगान आपने सुना संवेद स्वरों में। इसी के साथ आज का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है।

0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकाश किरण। अश्वघोष कृत सौंदर्यानंद महाकाव्य में बुद्ध का उपदेश आज हम सुनेंगे अपने इस कार्यक्रम में। आलेख और वाचन मधुर शास्त्री का है। आइए सुने कार्यक्रम प्रकाश किरण।
1: जीवन में श्रेष्ठ क्या है, इस संबंध में महात्मा बुद्ध ने अपने कामासक्त छोटे भाई नंद को जो उपदेश दिया है वह इस प्रकार है।

संसार के समस्त धनों में श्रद्धा का धन श्रेष्ठ है, क्यों? श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान रूपी रस ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यही रस सच्चे आनंद का अनुभव कराता है। आत्मा का सुख ही श्रेष्ठ है। विद्या के प्रति अनुराग सबसे बड़ी साधना है। बुद्ध ने मनुष्य का ध्यान आत्मोन्नति की ओर आकर्षित किया है। मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर पापों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तन्निश्चितं भीक्लमशुग्वियुक्तं परेश्वनायत्तमहार्यमन्यै नित्यं।

मनुष्य को कल्याणकारी शांति के सुख को ग्रहण करना चाहिए। यह वह सुख है जो निश्चित है, भय, ग्लानी और शोक से रहित है। यह सुख दूसरों पर आश्रित नहीं है। आत्मा का सुख ऐसा होता है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। इंद्रियों के विषयों से दुख उठाने का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि हम विचार पूर्वक देखें तो यह सत्य है, जहां भय और शोक है या जो सुख किसी दूसरे पर आश्रित होता है, वह कल्याणकारी कभी हो ही नहीं सकता।

मृत्यो समं नास्ति भयं पृथिव्याम् एतत्त्रयं खल्वशेन सेव्यम्। वृद्धावस्था के समान मलिनता अर्थात कुरूपता कोई नहीं है। संसार में रोग के समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान भय भी नहीं है, परंतु प्राणी इन तीनों अवस्थाओं को भोगने के लिए विवश है, क्योंकि सुंदर से सुंदर यौवन संपन्न प्राणी वृद्धावस्था में असुंदर और घृणित हो जाता है। निरोगता को सर्वप्रथम सुख माना ही गया है। मृत्यु से बढ़कर तो कोई भय हो ही नहीं सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। भय और शोक ये जीवन के मूल दुख हैं। अवश्य भावी प्रिय विप्रयोगः

प्रिय से वियोग होना अवश्यम भावी है, क्योंकि जिस वस्तु का जन्म होता है उसका विनाश भी अवश्य होगा ही। सभी को यह शोक सहना पड़ता है। शोक से उन्मत्त होकर अनेक राजर्षि एवं अन्य जन विवश होकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की दृष्टि माया मोह के कारण सत्य को जानकर भी अज्ञान हो जाती है, वह आसक्त होता चला जाता है। यहीं से दुख का प्रारंभ होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकाश किरण में अश्वघोष कृत सौंदर्यानंद महाकाव्य में बुद्ध का उपदेश। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:35 होने को हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज के प्रसंग को संवेद स्वरों में हम सब सुनेंगे। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगलवाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हों।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज प्रातःकालीन सभा में दिन में 10:55 से हम आपको सुनवाएंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता से सीधे संवाद का कार्यक्रम मन की बात। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। सांध्यकालीन सभा में रात्रि 10 बजे से आप सुन सकेंगे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम।

हमारी प्रातःकालीन सभा में ही अब से थोड़ी देर बाद यानी कि प्रातः के 6:50 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती की बातें। यूरिया ब्रिक फीडिंग का पशु प्रजनन में महत्व, इस विषय पर जानकारी देंगे विजय सिंह नौलखा। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर आएंगे प्रातः 7 बजे से। प्रादेशिक समाचारों का समय होगा प्रातः 7:18 का और 7:31 पर आपको सुनवाएंगे ब्रजभाषा का कार्यक्रम ब्रज माधुरी। आज इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे अपने पसंदीदा लोकगीतों को अपनी फरमाइश पर कार्यक्रम ब्रज लोक लहरी में। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि प्रसारित किया जाएगा प्रातः 8:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम आज प्रातः 9 बजे प्रसारित किया जाएगा जिसमें आप सुनेंगे प्रीति तिवारी की गाए हुए कुछ भजन। सामयिक चर्चा ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा प्रातः 9:15 से। प्रातः 9:25 का समय रहेगा कार्यक्रम आबोहवा का और प्रातः 9:30 पर आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम बाल गोपाल। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अमरनाथ विद्या आश्रम मथुरा के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा प्रातः 10:30 पर और 12 बजे का समय होगा फिल्मी कव्वालियों का। 12:30 पर आपको सुनवाएंगे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम के अंतर्गत जयप्रकाश दीक्षित के गाए हुए कुछ लोकगीत। इस मास का गीत आप सुन सकेंगे दिन में 1:10 पर। 1:15 पर आपको सुनवाएंगे एसपी सिंह की लिखी हुई झलकी घर परिवार, प्रस्तुति राजे सिंह की होगी। श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 1:30 पर। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक बार फिर प्रसारित किया जाएगा दोपहर 1:45 पर। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 से। 3 बजे हमारी पहली सभा का समापन होगा, दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5:30 से। आज की बात में कारगिल दिवस और मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बातें होंगी। इसी कार्यक्रम में आप सुनते हैं कुछ फिल्म संगीत भी। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:15 का और इस कार्यक्रम में चर्चा होगी खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे अपने पसंदीदा लोकगीतों को कार्यक्रम मन भावन में। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:45 का। संध्या 7:05 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक और इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे ब्रज काव्य मकरंद के अंतर्गत उद्धव शतक सौपाठ। शाम सुहानी कार्यक्रम लेकर आएंगे

0: संध्या 7:31 पर और एक ही फिल्म से कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 8:30 से। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे सुहाने तराने। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक लोकगीतों का कार्यक्रम सबरस। रात्रि 11:10 पर हमारी सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। यूरिया ब्रिक फीडिंग का पशु प्रजनन में महत्व, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: आज हम यूरिया ब्रिक फीडिंग का पशु प्रजनन में महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। भारत में पशुपालन के कार्य में ग्रामीण क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा लघु कृषक, सीमांत कृषक या भूमिहीन मजदूरों द्वारा पशुपालन कर पूर्ण किया जाता है। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण इनके द्वारा पाले गए पशु भी कुपोषण का शिकार होते हैं। पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध न होने के कारण इनका शारीरिक विकास मंद रहता है, इनकी प्रजनन क्षमता अधूरी रहती है, पशु देर से प्रजनन योग्य होता है, गर्मी के लक्षण भी प्रदर्शित नहीं होते, गर्भाधान के उपरांत पशु गर्भित नहीं होते हैं तथा ब्याने के बाद कम दूध उत्पादन होता है, काफ़ी समय तक गर्मी में नहीं आते और विभिन्न प्रजनन व्याधियों का शिकार हो जाते हैं। अब जानते हैं कि ये यूरिया मोलेसिस मल्टी न्यूट्रियट ब्लॉक यानी UMMB आखिर है क्या। यह यूरिया फीडिंग का एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है। इसके साथ ही इसमें भोजन के लिए अन्य आवश्यक तत्वों का मिश्रण भी इसे और उपयोगी बनाता है। यूरिया पशुओं के पेट में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है, साथ ही इसमें मिनरल आदि भी पशु को सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं। इसकी फीडिंग से पशु स्वस्थ रहता है, दुग्ध उत्पादन व प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है। जो पशुपालक कम संख्या में पशु पालते हैं तथा पशुओं में पोषण तत्वों की कमी होने पर UMMB यानी यूरिया मोलेसिस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक फीडिंग काफ़ी लाभदायक तथा आर्थिक रूप से उपयोगी सिद्ध हुई है। यूरिया ब्रिक को पशु के बांधने के स्थान पर रख देते हैं तथा पशु को उसे चाटने देते हैं। इसकी फीडिंग से अनेक लाभ हैं। बछिया व पड़िया इसके प्रयोग से कम समय में प्रजनन योग्य हो जाती हैं। गर्भित अवस्था में प्रसव के उपरांत इनके प्रयोग से दुग्ध उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है तथा पशु शीघ्र गर्मी में आता है। पशुओं को गर्मी में लाने में विशेष उपयोगी हैं। गर्मी में लाने के अन्य उपचारों के असर को भी यह बढ़ाता है। सामान्यतः उससे कम दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं की खली की आवश्यकता को भी काफी हद तक कम कर देता है तथा पशु प्रजनन संबंधी अन्य व्याधियों से भी पशु को मुक्त रखता है। अब बात आती है कि इसे बनाने की क्या विधि है। इसको बनाने की विधि अत्यंत सरल है। किसी बड़े उपकरण अथवा संयंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। पशुपालक एकल रूप से या समूह में सम्मिलित होकर इसको बना सकते हैं। ग्रामीण बेरोजगार इसे रोजगार के तौर पर अपना सकते हैं। UMMB यानी यूरिया मोलेसिस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक की एक ब्रिक का आकार सामान्यतः एक ईंट के आकार का बनाया जाता है। इसके लिए ईंट बनाने के ढांचे में थोड़ा फेरबदल कर उपयोग में लाया जा सकता है। इसका औसत वजन 3 किलोग्राम होता है। इसके लिए विभिन्न सामग्रियों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इसके निर्माण में जिन सामग्रियों को मिलाया जाता है वो इस प्रकार से है। मिनरल मिक्सचर लगभग 450 ग्राम, शीरा 900 ग्राम, नमक 200 ग्राम, यूरिया 300 ग्राम, सरसों या मूंगफली की खली 300 ग्राम, चावल की भूसी 300 ग्राम, आटा आप गेहूं का, मक्का का या बाजरे का कोई एक आटा ले सकते हैं 450 ग्राम, चूना 125 ग्राम। स्थानीय उपलब्धता के आधार पर खली व अनाज को बदला जा सकता है। आवश्यकता के अनुरूप अन्य तत्वों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। चूने को छोड़कर अन्य सामग्री को पीसने के उपरांत मिला लेते हैं, फिर इस सामग्री में चूना मिलाते हैं तथा वजन करते हैं। इसके बाद सांचे में सामग्री को भरते हैं, दबाते हैं तथा 2 दिन छाया में सुखाते हैं। इसके बाद पॉलीथीन में लपेटकर भंडारित करते हैं। यह कभी खराब नहीं होता है, इसे नमी से दूर भंडारित किया जाना चाहिए। यद्यपि यूरिया फीडिंग एक सुरक्षित विधि है, फिर भी कुछ सावधानियां इसमें आवश्यक है। 6 माह से कम आयु के बच्चों को यह नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके पाचन तंत्र का विकास इसके लिए उपयुक्त नहीं होता है।

0: एक भूखे, कमजोर व पानी की कमी वाले पशुओं को भी इसे नहीं देना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः स्वपदात् त्यागपत्रं दत्त्वा

0: केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः स्वपदात् त्यागपत्रं दत्त्वा तत् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने समर्पितवान्। सामाजिक सञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्रीप्रधानः अवदत् यत् गत दशदिनेषु छात्राणां विरोधप्रदर्शनानन्तरम् उत्पन्नया परिस्थित्या सः अत्यन्तं व्यथितः अभवत्। एतद् स्वस्य प्रतिष्ठायाः विषयः नास्तीति इत्यपि तेन उक्तम्। असौ नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले विद्यमानां स्थितिं समग्रदेशस्य परिस्थितिं चावलोक्य निर्णयम् अकरोत्। श्रीप्रधानः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मार्गदर्शनाय, विश्वासाय, निरन्तरसहयोगाय च कृतज्ञतामपि प्रकटितवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् राष्ट्रसेवा तस्य जीवनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति, सहैव जीवनपर्यन्तं तस्यै समर्पितः भविष्यतीति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः केन्द्रीयमन्त्रिपरिषदः धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रं तत्क्षणप्रभावेण स्वीकृतवती। धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लादजोशी नूतनशिक्षामन्त्री भविष्यति। वर्तमानदायित्वेन सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विद फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विद ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्ट।
0: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया देशानाम् आधिकारिक यात्रां सम्पन्नं कृत्वा अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यागतवती। अस्यां यात्रायाम् अनेकानि ऐतिहासिक सोपानानि स्थापितानि, तेषु कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया देशयोः प्रथमा आधिकारिक यात्रा, सहैव त्रिदशकानन्तरं रोमानिया देशस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा सम्मिलिता अस्ति। समग्रयात्रावधौ राष्ट्रपतिपदासीना मुर्मुः विभिन्न देशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताः अकरोत्। व्यापार मञ्चान् सम्बोधितवती तथा भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्यैः सह संवादमपि अकरोत्। प्रशासनं श्वः लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतत् विधेयकं सोमवासरस्य लोकसभा कार्यसूचौ समाविष्टम्। एतेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनं भविष्यति। केन्द्रीयमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतत् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। उल्लेखनीयमस्ति यत् गतशुक्रवासरे केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गे, परीक्षासु च अनुचितसाधनप्रयोगप्रकरणेषु द्रुतन्यायालयानां स्थापनाय, दोषिषु च कठोरतरदण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूपविधेयकम् अनुमोदितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य पूर्वाह्ने 11 स्वीय मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य इदं 37-100 संस्करणं भविता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः, दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी, दूरदर्शनं, प्रधानमन्त्रिकार्यालयः, सूचनाप्रसारणमन्त्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सायं 4:30 दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीयमाध्यमेन 26-2000 विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य सहभागिभिः सह संवादं साधयिष्यति। 20-20 पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन त्रिस्पर्धात्मक श्रृंखलायाः द्वितीय क्रीडायां जिम्बाब्वे दलं 90 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय प्रातः के 7 बजे हैं और ये समय है पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित हमारे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। तो आइए शुरू कर

सीआईडी फिल्म का एक गीत आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज़ में। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत था ओपी नैयर का।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे की। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है बरसात। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: Right. All right.
1: How
0: are the other ones? There.

शहनाई फिल्म का ये गीत आपने सुना, जितलकर शमशाद बेगम और मीना कपूर की आवाज में। गीत को लिखा था एलपी संतोषी ने और संगीत था सी रामचंद्र का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

बारिश फिल्म का ये गीत आपने सुना चितलकर की आवाज में। गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत था सी रामचंद्र का। और बारिश फिल्म के इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:18 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा

0: करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने की प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। और यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा हर भारतीय के लिए यह गर्व का क्षण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी CJP के बीच कल तीसरे दौर की वार्ता में CJP ने दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में जारी प्रदर्शन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह तथा CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की चर्चा में परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से संबंधित मांगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बाद में नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री नड्डा ने कहा कि बैठक के दौरान सरकार ने CJP की इस मांग को मान लिया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि कोई FIR दर्ज की गई है तो उसे वापस लिया जाएगा और FIR की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: आत्महत्या करने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेजने के बाद कहा कि पिछले 10 दिनों से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी का ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी दांव पेच में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद आज पीलीभीत के पूरनपुर में ऐशबाग कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा बदायूं में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री वर्मा ने कल संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि इस सेवा के शुरू होने से बदायूं और उझानी क्षेत्र के यात्रियों को राजधानी लखनऊ के लिए सीधी रेल सुविधा उपलब्ध होगी।
2: उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य भी मिलेगा। हरी झंडी में अपने जो गृह नगर है, होम टाउन है उझानी, उस रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन उझानी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में सबसे पहली योजना में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था।
0: श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में गठित न्यू SIT टीम का विस्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इसमें IG किरण एस के अलावा DIG अयोध्या सोमेन वर्मा और SSP अयोध्या डॉ. गौरव ग्रोवर को शामिल किया गया है। इससे पहले

0: एसआईटी में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार शामिल थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल एआईआर न्यूज अंडरस्कोर जीकेपी पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में जालौन विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए अपनी गौरवशाली और नई पहचान को सुदृढ़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सोलर एक्सप्रेस वे बन रहा है।
1: बुंदेलखंड में कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती थी, ये क्षेत्र बीहड़ था, अंधेरा होते ही पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था, लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहड़ के अंधेरे को एक ओर करते हुए इसको विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। अब उसको एक नई पहचान बन गई है, देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनपद फतेहपुर में 489 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।
1: आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर, आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के दिन आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं वैश्विक जगत में अपनी दाग को का लोहा मना सकता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही 2 दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे। उन्होंने यहां 342 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। आगरा पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है, जिनके ज्ञान, करुणा और सद्भाव के शाश्वत संदेश से विश्व प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मान्यता देश की समृद्ध सभ्यतागत और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है। विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर वाराणसी के निवासी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि यह काशीवासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
2: सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना हम सभी काशीवासियों के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। भगवान बुद्ध की प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन स्थली को मिली यह वैश्विक पहचान भारत की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान है।
0: माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को अपना आवेदन संबंधित अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य को 5 अगस्त तक देना होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने की प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात और यूनेस्को ने

0: के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, हर भारतीय के लिए यह गर्व का क्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

कृष्ण जय श्री राधे। भैया आप सबन को खूब खूब स्वागत आपके अपने कार्यक्रम ब्रज माधुरी में। और आज रविवार को दिना है आप सब सुनोगे अपने पसंद के लोकगीतन को कार्यक्रम ब्रज लोक लहरी। लेकिन लोक लहरी में आपके भजन और आपके पसंद के लोकगीतन को तान आप तो सुनोगे ही सुनोगे। वहते पहले नेक सी बात करें कि जा समय ब्रजमंडल में खूब भीड़ मच रही है और जा भीड़ के पीछे जो कारण है वो कारण है हमारे ब्रज के उत्सव महोत्सव दर्शन और यमुना स्नान। भैया कल एकादशी हरिशयनी एकादशी गई और बस चातुर्मास को प्रारंभ है गयो और आए व्यवहार कुछ दिना में गुरु पूर्णिमा महोत्सव को हमारे ब्रजमंडल में आयोजन होएगो। हमारे ब्रजराज जो हैं कान्हा कृष्ण वो गिरधरधारी वो गिरिराज जी के रूप में यहाँ पूजे जाए हैं और गिरिराज जी में जो आयोजन विशेष हुए हैं क्योंकि भैयाओं भाई मनुष्य को तो कोई गुरु हो सके है लेकिन सर्वनियंता जो हैं वो सबके गुरु हैं। हमारे कृष्ण जो हैं वो जगत गुरु हैं। तो विन के काजे अपने भक्ति भाव को उमड़ावे के ताई विन के दर्शन करवे के ताई विन को प्रणाम करवे के ताई ब्रज में सगरे दर्शनार्थी श्रद्धालुगण आ रहे हैं और ब्रजराज को कहा कहनो हमारे जो गिरिराज जी महाराज हैं वो तो ब्रज के राजा हैं तो उनकी तो बात ही अलग है। तो उनके प्रति अपने श्रद्धा व्यक्त करवे के ताई हम सब भी जुड़ जाए हैं और गिरिराज महाराज की जयकार के साथ में खूब सुंदर सुंदर लोकगीत सुने हैं खूब सुंदर गाए हुए हैं बजावे हैं। तो अभी अपने कार्यक्रम में कौन सा गीत ले हुए हैं कौन की पसंद पे ले हुए हैं वो भी आपको बताए दें। तो सबसे पहले जो हमारे पास संदेश आयो वह हमारे श्रोता हैं जसवंत नगर ते जिला इटावा ते गोकर्ण सिंह दिव्या नैतिक संगीता विपिन कुमार कुमारी प्रीति युवान विहान और इनके सगरे परिवारी जन। इनके संग ही संग जे हमारे अगले श्रोता हैं ग्राम फरांसी जिला हिसार ते राज कुमार डुड्डी प्रमोद कुमार डुड्डी पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी और इनके सगरे संगी साथी जी हैं। हमारे श्रोता हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्रमणि वर्मा नोखेलाल वर्मा और इन्होंने जिस संदेश भेजो भाटापारा छत्तीसगढ़ दत्तरें गीते। और जे श्रोताएं हमारे मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा ते हैं जिनको जो संदेश आयो है श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख कुमार संचित वायाल कुमार प्रथमेश देशमुख कुमार सर्वत देशमुख कुमारी प्रणाली देशमुख कुमारी सानवी देशमुख कुमारी हर्षिता देशमुख और इनके परिवारी जन। ये हमारे श्रोता हैं मोताला महाराष्ट्र ते विजय सुरलकर रतनवाला सुरलकर और आराध्या कुमारी। इनके संग हमारे एक और श्रोता जुड़ गए हैं ऊपर कोट मोहल्ला चौकुटी बुलंदशहर ते मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी फरदीन अब्बासी सुहान अब्बासी अरजान अब्बासी अबान अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार। तो आप सबकी पसंद पर सुनवाए रहे हैं माधुरी शर्मा के गायब है जा लोकगीत को।

अभी आपने सुनो माधुरी शर्मा के सुर में जा लोकगीत को, बिरज को गोवर्धन राजा। और अब सुने आपकी अगली फरमाइश के ताई संदेशन के और आप सबके नाम। तो जे संदेश आयो है कवि रेडियो श्रोता संघ डोडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ ते, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और इनको पोता मास्टर अल कबीर, जिनके संगे संग हैं हमारे श्रोता दतरंगी ते भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। जे हैं उमा शर्मा।

हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, अमित, शिवान, शिवांगी, चुन्ना और इनके मम्मी पापा को संदेश मिलो। और अब सुनवावे आपको शालिनी शर्मा के गाए भेजा लोकगीत को, जा की आपने फरमाइश करी।

आमंदेव मेरे राजा जी को। अब भाई आपने जालो गीत को सुनो शालिनी शर्मा के स्वर में, और अब आपकी फरमाइश को ले लेवे नरेश चतुर्वेदी, दीप्ति चतुर्वेदी, स्मृति चतुर्वेदी, रामदेव चतुर्वेदी को जे संदेश मिलो अशोका टावर डैम्पियर नगर मथुरा ते, और जे हैं ग्राम उन्दी ते जनार्दन सिंह सिसोदिया, लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, टीकम सिंह सिसोदिया और बंशी भारे बाबा। जाके बाद बस स्टैंड के पास चौक छतरपुर बुंदेलखंड से बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, अंशिका, मोहिनी, गोलू, नीरज, छोटा भांजा, बड़ा भांजा, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, बड़े भैया हरिराम, बड़े भैया दशरथ और काजल, करण, भारती, आरती और बाबू को जे संदेश प्राप्त भयो बुंदेलखंड ते। जाके बाद शामिल कर रहे हैं हमारे जिन श्रोतान को संदेश जे हैं डोंगरगढ़ ग्राम राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ते राष्ट्रपाल गज

भी है, राधिका गज भी है, बेबी अनुष्का तन्मय गज भी है और इनके परिवारी जन। जी हैं हमारे श्रोता बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ते, रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल बाबू, प्रियांश कुमारी भाव्या, और जे संदेशा प्राप्त भयो हमें रिद्धि सिद्धि गुप्ता, रानी मुकेश गुप्ता, दादा ठाकुर, कुशेश्वर गुप्ता, राजनगर, कांति निकेतन ते, जिनको जो संदेशो प्राप्त भयो। तो भैया आप सबको सुनवावे हैं स्वामी राम स्वरूप शर्मा के स्वर में जा लोकगीत कूँ।

छबीलो छेला गिरधारी। अभय आपने जालो गीत को आनंद लियो स्वामी राम स्वरूप शर्मा के स्वर में, और जालो गीत के ताई भी अपने फरमाइश हमारे संग जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता, और विनको नाम जरूर पढ़ दें। चकला बाजार समाना शहर पंजाब ते पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, हसमुख लाल खुशदिल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजी पप्पू खुशदिल, संजीव कुमार जिंदल और समस्त खुशदिल परिवार। जी हमारे श्रोता गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से जुड़े भए राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ ते जुड़े भए थे मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। जे श्रोता हमारे जुड़े भए थे ग्राम अलीगंज बेनजीर जिला रामपुर ते धर्मपाल सैनी, अरुण सैनी, हिमांशु सैनी, प्रबल सैनी, नैन्सी सैनी, गौरी सैनी और इनको समस्त परिवार। और भैया आपसे एक अनुरोध अवश्य करेंगे कि आपके जब फरमाइश आपकी पूरी है जाए तो दोबारा अपने नाम की ताई अपनी फरमाइश की ताई आग्रह कृपा करके ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को भी जो संदेश हैं वो शामिल है सकें, उनके नाम पढ़े जा सकें। बार बार उन्हीं श्रोताओं के नाम ले वो अच्छो ना लगे, और जे आप सबको भी समझ में आ रही होगी तो आज तो आपके संदेशन को हमने शामिल किया, सुनवायो आपके पसंद के लोकगीतन को। और अब आज के कार्यक्रम को समय है चलो है, तो अगले कार्यक्रम में अगले रविवार ब्रजलोक लहरी की तानी हुई छिड़ेगी। अपने पसंद के लोकगीतन को हम तक भेजियो और सुनियो प्रेम ते, तो आज के ताई हमें आज्ञा दो और स्वीकार करो हमारी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज।

0: सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
3: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय वायु

0: सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह

0: नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPA के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPA ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPA ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जाँच 2 महीने में होगी पूरी। वही नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। चौथे साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। The headlines. CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce public examinations, Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Divas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls.

शोर फिल्म का ये गीत आपने सुना महेंद्र कपूर, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में। शब्द रचना वर्मा मलिक की थी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: यार प्लीज जल्दी।
1: दूसरा कोई मैच है क्या?
0: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
1: हाँ यार उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
2: पर बैंकिंग में नहीं।
3: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
2: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का, और पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: सिंह इज किंग, इस फिल्म का गीत आपने सुना राहत फतेह अली खां और ऋषिया घोषाल और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा था मयूर पुरी ने, संगीत था प्रीतम का।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: पापोन की आवाज में आपने सुना सुल्तान फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था इरशाद कामिल ने, संगीत था विशाल शेखर का। और इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं पर समाप्त हुआ। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9 बजे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में हमारी कलाकार हैं प्रीति तिवारी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में कुछ भक्ति रचनाएं।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। वनितालोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार यानी 27 जुलाई 2026 को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलेश गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण और निवारण विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण और निवारण। श्रोताओं, आप मस्तिष्क एवं नसों के रोग जैसे मिर्गी, सिरदर्द, लकवा, माइग्रेन, सुन्नपन, झंझनाहट, कंपन, सियाटिका, याददाश्त का कम होना, पार्किंसन डिसीज आदि समस्या के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर नीलेश।

गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन से। श्रोताओं ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार यानी कल 27 जुलाई सन 2026 और समय अपराह्न 1:15 से। कार्यक्रम संबंधी यह सूचना समाप्त हुई। आइए पुनः चलते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत की ओर। आज कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं कुछ भजन। कलाकार हैं प्रीति तिवारी।

तुम सम कौन दीनन हितकारी। इसी भजन के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत का अब यहीं पर विराम देते हैं। आज की कलाकार थी प्रीति तिवारी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे जल संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कैच द रेन अभियान के उद्देश्य और महत्व पर लखनऊ विश्वविद्यालय की जंतु विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमिता कनौजिया से खास बातचीत। वार्ताकार हैं राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: देश भर में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कैच द रेन अभियान को एक बार फिर गति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वर्षा की हर बूंद को बचाने का आह्वान किया है। 4 जुलाई से 4 अगस्त तक चल रहे इस राष्ट्रव्यापी अभियान में वर्षा जल संचयन, भू जल पुनर्भरण, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जन भागीदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इन्हीं विषयों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की जंतु विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमिता कनौजिया। मैम, मैम आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: मैम, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि कैच द रेन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस बार इसे किस सोच के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

0: कैच द रेन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये अभियान चलाया है और 2021 से ये स्टार्ट हुआ है, इसमें मेन ये है वाटर कंजर्वेशन पे है खास तौर से, और उसमें भी वाटर कंजर्वेशन में खास तौर से ग्राउंड वाटर की बात हो रही है। और इसीलिए क्या है कि जब बारिश का पानी गिरता है तो वो धरती में जाता है, अगर हमारे पास बावली नहीं होते हैं, लेक्स नहीं होते हैं या बोरवेल्स हमारे नहीं होते हैं तो वो पानी संचित नहीं होता है और वो बह जाता है और ड्रेनेज के थ्रू ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो उस पानी को इकट्ठा करके उसके थ्रू ग्राउंड वाटर को मेंटेन करने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की।
1: मैम, प्रधानमंत्री ने मन की बात में वर्षा की प्रत्येक बूंद को बचाने की अपील की है, इस अभियान में आम नागरिकों की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है और लोग अपने स्तर पर क्या क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, साउथर्न एशिया का पार्ट है और इसमें 140 करोड़ लगभग जनता है, और इस बड़े देश में आपने देखा वाटर की क्राइसिस तो है ही है। धरती पर 98% वाटर जो है हम लोग नियर अबाउट सब समुद्र में है, मैक्सिमम वाटर कुल 2.6 वाटर पेयजल का है और इसमें कुल 2.6 में भी कुल हमें 0.6% हमको अवेलेबल है, बाकी सब ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। तो जब हम 0.6% वाटर है तो आपको मालूम है कि वाटर क्राइसिस है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि करने के लिए पानी की जरूरत है। भविष्य को देखते हुए हमें ये चाहिए कि जन जन को इस अभियान में शामिल होना चाहिए, क्योंकि पानी चाहे शहर की बात करिए, चाहे गांव की बात करिए, चाहे सेमी अर्बन के जीने के लिए पानी जरूरी है और साथ में हमारे रिसोर्सेज के लिए भी पानी की जरूरत है। तो हमें जरूरी है कि पानी को हम संरक्षण करें और इसलिए ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। जब तक कि हर नागरिक इस देश का आगे नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं हो पाएगा।
1: मैम, इस अभियान के तहत वर्षा जल संचयन, भू जल पुनर्भरण, तालाबों और कुओं के पुनर्जीवन जैसे कार्यों पर विशेष जोर दिया जा रहा है, इन प्रयासों का दीर्घकालिक लाभ क्या होगा?
0: देखिए, आज एक स्थिति हो रही है कि आपने देखा है कि कई जगह आप बुंदेलखंड में जाइए पानी की कमी है, महोबा और ऐसे एरिया में, क्योंकि वो ऐसा एरिया होता है कि जब जून की गर्मी आती है तो वहाँ पे जो बेतवा है, केन है, बिल्कुल नदियाँ एक धारा सी बन के रह जाती हैं, पानी कम हो जाता है। छतरपुर ऐसा एरिया है जहाँ पानी नहीं है और बात की जा रही है कि केन बेतवा को जोड़ा जाए तो हम छतरपुर में पानी ला पाएंगे, पन्ना से होता हुआ। तो जब ऐसी स्थिति है तो हम बात कर रहे हैं कि हमें एक एक बावली, लेक, वेटलैंड्स, पॉन्स, बोरवेल्स जो सूख चुके हैं, जो नष्ट हो चुके हैं, और स्टेप वेल्स जो सीढ़ियों वाली हमारी पूरी, या हेरिटेज वेल्स है हमारे दुनिया में कई जगह ऐसे जो बावली बनी है पुराने जमाने की, उसको हम पढ़ें, उसको स्टडी करें कि पानी का संरक्षण कैसे किया जाता था और आज हम उसी ट्रेडिशनल नॉलेज पे जा करके उनका संरक्षण करें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पानी इकट्ठा कर सकें रेन वाटर और उस माध्यम से उसको हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते। तो इसलिए हर बावली, हर पुराने जो बोरवेल्स हैं, जैसे हमारे लखनऊ में बख्शी का तालाब है, आपने स्टेप वेल देखा है, ऐसे ही हमारे गुजरात में, बेंगलोर में कई जगह पुरानी पुरानी बावलियां हैं, तो उनको हम संरक्षित करें और उनको जब हम रिवाइव करेंगे तब उनमें पानी भरेगा। तो वही ट्रेडिशनल नॉलेज के अनुसार, क्योंकि वो बहुत ही वैसे ढंग से बनाई गई हैं जिसकी हमें स्टडी करनी चाहिए, जब पानी उसमें इकट्ठा होगा तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा।
1: मैम, केंद्र सरकार ने घरों, सोसाइटियों और संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, रिचार्ज पिट बनाने और अनुपयोगी बोरवेल को पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर जोर दिया है, इनको लागू करने में क्या चुनौतियां हैं और कैसे इन पर काम किया जा सकता है?
0: देखिए, काम तो किया जा सकता है लेकिन चुनौतियां ज्यादा हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये जो योजना चलाई है 2021 में, मतलब उसके पहले हम लोग ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो आज बहुत सी चीजें हमारी शैटर्ड हैं। तो हमें जब उनको रिवाइव करेंगे, तो जब आप किसी भी एक वाटर बॉडी के पास जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा वहां पे? एक गंदा नाले जैसा पॉन्ड या खराब पानी, उसका होगा बहुत गंदा होगा, पीने लायक नहीं होगा, इवन पीने क्या किसी भी प्रयोग के लायक नहीं होगा, कृषि के लिए भी नहीं होगा। तो इन सब चीजों के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है, एक्सपर्टीज की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, दिशा निर्देश की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत। तो ये डिफिकल्ट जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता। अगर हम फेजेस में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, प्लानिंग बनाएंगे और हम उसके लिए काम करेंगे तो हम इन सारी जो रोड़े हैं इन सबको हटा लेंगे और हम उनका संरक्षण कर सकते।
1: मैम, जल संचय जन भागीदारी अभियान के पहले चरण में 10 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 27 लाख से अधिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनी और दूसरे चरण में 1 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 1.5 करोड़ से अधिक संरचनाओं की सूचना मिली है।

0: इन उपलब्धियों को आप किस तरह देखते
1: हैं? हम इन उपलब्धियों को ये देखते हैं कि हमारा समाज इसका मतलब जागरूक हो रहा है, लोग चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि इनका संरक्षण किया जाए, लोग आगे आना चाहते हैं, अगर उनको गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है तो सहयोग करना चाहते हैं, एफिशिएंसी है हमारे सिस्टम में जो कहीं छिपी हुई है, तो अगर हम उतने ही एफिशिएंट हो जाएं और ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाकर सपोर्ट करें और पब्लिक को जोड़ें, तो हमें लगता है कि देर नहीं है कि चीज़ों को हम सॉल्व कर सकेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे।
0: मैम, इस अभियान में पंचायतों, शहरी निकायों, महिला समूहों, युवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों की जो भूमिका है उसके बारे में प्रकाश डालिए।
1: बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए अभियान चलाते हैं तो हमारे जो समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। एजुकेशन सिस्टम को जोड़ना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं जो पानी पे रिसर्च कर रहे हैं, कोई वाटर टॉक्सिकोलॉजी पे काम कर रहा है, कोई वाटर की हाइड्रोलॉजी पे काम कर रहा है, कोई वेटलैंड कंजर्वेशन पे काम कर रहा है कई सालों से, तो जो उनकी एक्सपर्टीज है वो हमारे अभियान में बहुत काम आए। महिला को क्यों जोड़ा? आपको मालूम है महिला एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में फेस करती है पानी की क्राइसिस को। हमारे समाज की यूनिट क्या है? फैमिली। और फैमिली की कर्ता धर्ता कौन है? महिला। वो ये महसूस करती है कि अगर एक दिन पानी ना आए तो घर में खाना कैसे बनेगा, स्नान गृह में भी पानी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, कपड़ा धोने का पानी भी नहीं है, बर्तन धोने का भी पानी नहीं है। तो महिला को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती है, तो वो जानती है कि इसके लिए हमें काम करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो वो इंथुसियास्टिक होके पूरा अपना 100% योगदान देंगी, और वो हो भी रहा है। साथ में पंचायत, देखिए पंचायत एक ऐसी बॉडी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी गांव में जितनी भी बावलियां हैं, लेक्स हैं, वो सब ग्राम पंचायत की जमीन है, वो प्राइवेट जमीन नहीं है, तो उसमें काम करने के लिए हमारे ग्राम पंचायत का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जब तक वो आगे नहीं आएंगे तो हम काम कैसे करेंगे, तो उनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है।
0: मैम, आकाशवाणी के माध्यम से आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो इस अभियान से जुड़ करके जल संरक्षण को अपना जन आंदोलन बना सके, उनकी क्या भूमिका है?
1: हमारे जो श्रोता हैं, कहीं ना कहीं जो शहर में रहते हैं और जो गांव में रहते हैं, हमारा ये जन से आह्वान है कि आप किसी भी गांव के हैं, किसी भी एरिया के हैं, आपके आसपास कोई भी जल स्रोत है उस पे ध्यान दें, उसको मेंटेन करें। हमारी क्या आदत है कि हमारा घर साफ हो जाए बाकी कूड़ा तालाब में, सीवेज उधर ही हमारा जा रहा है। हम ये सोचते हैं कि ये काम हमारा नहीं, गवर्नमेंट का है, लेकिन अगर लोग अपना एक समूह और सोसाइटी बना करके अपने अपने एरिया की चीजों को अगर संरक्षित करें, और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात की गई है सब जगह कि हम घर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं, जिससे कि उस पानी को हम इकट्ठा करके और उसको हम अपने घर के प्रयोग में ले आए, टैंक बनाएं और उसके गार्डनिंग में, और ये तो बूंद बूंद करके जैसे गागर भरती है, तो हर जन जब थोड़ा थोड़ा करेगा तो वो मिलके बहुत बड़ा काम हो जाएगा, एक अभियान में कन्वर्ट हो जाएगा और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हमारा ये होगा, और हमारी फिर समस्या खत्म हो जाएगी, आगे हम आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे सकेंगे, तो हम सभी लोग को इसमें भाग लेना चाहिए।
0: मैम, आपने जल संरक्षण और कैच द रेन अभियान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार, थैंक यू।
2: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना जल संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कैच द रेन अभियान के उद्देश्य और महत्व पर लखनऊ विश्वविद्यालय की जंतु विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमिता कनौजिया से खास बातचीत। वार्ताकार थे राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: सामयिक चर्चा, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, और अब आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।
4: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। पर्यावरण अनुकूल ईंधन बायोडीजल, इस विषय पर आज का आलेख और वाचन कर रही हैं ज्योति शर्मा।
5: घरेलू नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त किया जाने वाला वह वैकल्पिक ईंधन है जो पूरी तरह से जलकर ऊर्जा देता है। इसमें कोई पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होता, लेकिन ऐसे पदार्थों के साथ मिलाकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही बायोडीजल मिश्रित ईंधन का प्रयोग करने के लिए डीजल इंजन में कोई खास परिवर्तन करने की जरूरत

0: नहीं होती। बायोडीजल बनाने के लिए सोयाबीन, अलसी, महुआ, अरंडी, सरसों आदि सुपरिचित कृषि जन्य उत्पादों से प्राप्त वसा या वनस्पति तेल अथवा जंतुओं से प्राप्त वसा को एक खास रासायनिक प्रक्रिया ट्रांस एस्टरीफिकेशन से गुजारा जाता है। इस क्रिया में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में वनस्पति तेल की अभिक्रिया मिथाइल या इथाइल एल्कोहल से कराई जाती है। इसके उत्पाद के रूप में मिथाइल एस्टर्स और ग्लिसरीन प्राप्त होते हैं। मिथाइल एस्टर्स और कुछ नहीं बायोडीजल का ही रासायनिक नाम है। बायोडीजल से अभिप्राय इसका शुद्ध रूप है, न कि डीजल मिश्रित रूप, जबकि वाहनों में डीजल मिश्रित बायोडीजल का प्रयोग किया जाता है। यह डीजल के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। वैकल्पिक ईंधन के रूप में बायोडीजल पारंपरिक डीजल ईंधन जितनी शक्ति उपलब्ध करा सकता है और इस प्रकार इसे डीजल इंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आयातित कच्चे पेट्रोलियम डीजल पर देश की निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। बायोडीजल सुरक्षित वैकल्पिक ईंधन है जो पारंपरिक पेट्रोलियम डीजल का स्थान ले सकता है। इसमें उच्च स्तर की चिकनाहट होती है और यह स्वच्छ जलने वाला ईंधन है तथा मौजूदा डीजल इंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। बायोडीजल जैव अवक्रम्य है और पर्यावरण के लिए ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि पेट्रोलियम की तुलना में इसके प्रज्वलन से कार्बन मोनोऑक्साइड के निष्कर्षण में लगभग 50% व कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कर्षण में लगभग 70-80% तक की कमी देखी गई है। जहां पेट्रोलियम ईंधन धरती में जमा कार्बन को पुनः वातावरण में लाकर प्रदूषण के स्तर को तेजी से बढ़ा रहे हैं, वहीं बायोडीजल लगभग उतने ही कार्बन को वातावरण में वापस करते हैं जितना वनस्पतियों द्वारा इनके संश्लेषण में होता है। अतः इसके उपयोग से प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आ सकती है। बायोडीजल उत्पन्न करने से स्थानीय आर्थिक पुनरुद्धार में मदद मिल सकती है तथा स्थानीय पर्यावरण को लाभ हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बायोडीजल में 100 से अधिक सीटेन नंबर होते हैं। सीटेन नंबर ईंधन के ज्वलन की गुणवत्ता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात किसी भी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की तुलना में इसमें ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होती है। बायोडीजल किफायती है और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त भी रखता है। इसे पेट्रोलियम डीजल ईंधन की तरह पंप, भंडारित व जलाया जा सकता है। बायोडीजल का फ्लैश पॉइंट 2660 डिग्री फारेनहाइट से अधिक होता है, जिसका मतलब है कि जब तक इसे पानी के क्वथन बिंदु से ऊपर गर्म न किया जाए तब तक यह दहनशील पदार्थ का मिश्रण नहीं बना सकता। बायोडीजल के दहन से पेट्रोलियम के दहन की तुलना में कणिका रूपी प्रदूषक पदार्थों की मात्रा में लगभग 65% की कमी आती है। इसका अर्थ है कैंसर होने की संभावना में लगभग 85% की कमी। इसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बेंजो फ्लोरोएंथीन तथा बेंजो पायरीन सदृश गंधयुक्त हाइड्रोकार्बन की मात्रा भी पेट्रोलियम की तुलना में लगभग आधी होती है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य की दृष्टि से ये कई गुना अधिक सुरक्षित है। भारत पेट्रोलियम के सबसे बड़े उपभोक्ता व आयातक देशों में से एक है। भारत अपनी पेट्रोलियम मांगों का करीब 70% आयात करता है। भारत में डीजल की वर्तमान वार्षिक खपत लगभग 4 करोड़ टन है। भारत द्वारा पेट्रो उत्पाद की खपत के मामले में बायोडीजल प्रमुख प्रतिस्थापक हो सकता है, जो पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ व प्राकृतिक तेल है। श्रोताओं, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रकृति हमें जीवन देती है, नहीं मूल्य उसका लेती है। विकट भंवर में फंस जाने पर जीवन नैया वह खेती है। बायोडीजल पर्यावरण अनुकूल ईंधन है जो पर्यावरण के साथ साथ हमारे लिए भी अनुकूल है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम बाल गोपाल।
2: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल।

0: एयरपोर्ट वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बाल गोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अमरनाथ विद्या आश्रम मथुरा। कार्यक्रम पेश कर रही हैं फरहा खान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अमरनाथ विद्या आश्रम मथुरा।
3: बच्चों जय हिंद।
4: जय हिंद।
3: बच्चों आप सुन रहे हैं बाल गोपाल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ फरहा। बच्चों आज का बाल गोपाल कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि हमारे स्टूडियो में आज आए हैं अमरनाथ विद्या आश्रम मथुरा के होनहार और प्रतिभाशाली बच्चे। ये नन्हे कलाकार अपनी मधुर आवाज, सुंदर कविताओं और देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों के माध्यम से आज आप सभी का मन मोह लेंगे। तो चलिए तालियों और शुभकामनाओं के साथ उनका स्वागत करते हैं। तो बच्चों बाल गोपाल कार्यक्रम में सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमरनाथ विद्या आश्रम के परिचय से। विद्यालय की विशेषताओं और उनकी शैक्षिक गतिविधियों से हमें परिचित कराएंगी विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मधुबाला शर्मा।
5: अमरनाथ विद्या आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। यह देश व प्रदेश की एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था है जो अपनी शैक्षणिक सुव्यवस्था के द्वारा अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वर्ष 1975 में श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी की पूज्य माँ द मदर का प्राप्त आशीर्वाद विद्यालय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक मोड़ सिद्ध हुआ। विद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य स्वर्गीय श्री आनंद मोहन वाजपेयी जी के कुशल, दूरदर्शी एवं प्रेरणादायी नेतृत्व में यह संस्थान मथुरा जनपद में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। अमरनाथ विद्याश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा का प्रथम CBSE से संबद्ध अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है। विद्यालय में प्रत्येक छात्र छात्रा को ऐसा शैक्षणिक वातावरण मिलता है जो स्नेहपूर्ण, सहयोगात्मक, सुव्यवस्थित, सकारात्मक तथा शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रेरणादायक है। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षण तक सीमित नहीं है बल्कि हम प्रत्येक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में सक्रिय सहभागिता एवं विश्वास रखते हैं। विद्यार्थियों के बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास के माध्यम से उन्हें एक जिम्मेदार, आत्मविश्वासी एवं आदर्श नागरिक के रूप में विकसित करना ही हमारी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। अमरनाथ विद्याश्रम के विद्यार्थी अनुशासित एवं संस्कारित हैं। अमरनाथ विद्याश्रम के पूर्व छात्र भारत के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में राजनीति, सशस्त्र सेनाएं, राजनयिक सेनाएं, भारतीय प्रशासनिक एवं सिविल सेवाएं, चिकित्सा, खेल, कला एवं संस्कृति, उद्यमिता, आविष्कार एवं नवाचार, अर्थशास्त्र, शिक्षा तथा पत्रकारिता में उच्च पदों पर अपनी उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अमरनाथ विद्याश्रम में बच्चों के खेल के लिए जहां एक विशाल प्रांगण है वहीं शिक्षण के लिए डिजिटल बोर्ड भी है। सर्वांगीण विकास की बात करें तो यह विद्यालय हर पल छात्रों के विकास के लिए प्रयासरत है। जहां छात्रों को डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा है वहीं संगीत और कला के लिए विशाल संगीत कक्ष संपूर्ण वाद्यों सहित सुशोभित है। इसके अतिरिक्त तैराकी के लिए विशाल स्विमिंग पूल भी विद्यमान है जहां छात्र कक्षा के क्रमानुसार तैराकी सीखते हैं। सुंदर कंप्यूटर लैब व प्रयोगशालाएं हैं। NCC का प्रशिक्षण कक्षा 8 से कक्षा 10 के छात्रों को दिया जाता है। इस प्रकार विद्यालय हर क्षेत्र में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है।
3: बच्चों अभी आपने अमरनाथ विद्या आश्रम का संक्षिप्त परिचय सुना और हमें विद्यालय की प्रेरणादायी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली। अब आइए सुनते हैं उसी विद्यालय के प्रतिभाशाली बच्चों की मधुर प्रस्तुति। प्रस्तुत है पेशगान जिसे प्रस्तुत करेंगी इशिका अग्रवाल, अलीशा खान, आरोही अग्रवाल, यशस्व राठौड़, राधिका कौशिक,

0: बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बच्चों, अमरनाथ विद्या आश्रम के इन नन्हे कलाकारों ने अपने मधुर स्वर और देशभक्ति की भावना से हम सभी का मन मोह लिया। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक प्यारी सी कविता, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अंशिका अग्रवाल।
1: निर्जला निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटातोप अंधियारों में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंह नाद की जगह श्रृंगालों की आवाजें आती हैं, जब सिंह नाद की जगह श्रृंगालों की आवाजें आती हैं, जब कुओं के आदेशों पर कोयले बाध्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है, हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का, हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी सूर्य की महाज्वाल, अब ला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, अब ला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी, लेकर कृपाण संकल्प किया।

0: नहीं घटने दूंगी। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया बलगाई सादी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार गह लिए खड़ग निज हाथों में। जब तक महिषेश शीश पर है, जब तक महिषेश शीश पर है उदाहरण तनुराई का, बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मी बाई का। अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत करते हुए, गोरों की सेना पर रानी दानावल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भरकर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग भवन, बादल बादल बन बरस गया, चपला समतलवारें चमक उठी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पौ बारे थे, रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पौ बारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज्य हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को अक्षण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है। इतिहास साक्षी बन जाता है, इतिहास साक्षी बन जाता है हर अकथनीय सच्चाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मी बाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मी बाई का। जय हिंद जय भारत।
1: तो बच्चों, ये थी अंशिका अग्रवाल की एक मनमोहक प्रस्तुति। अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं संवेद स्वरों में एक प्रस्तुति। आइए सुनते हैं अमरनाथ विद्या आश्रम के विद्यार्थियों की यह सामूहिक प्रस्तुति।

वाह बच्चों, संवेद स्वरों में प्रस्तुत यह मधुर गीत वास्तव में अत्यंत मनमोहक रहा। तो बच्चों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बच्चों, इसी के साथ बाल गोपाल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अमरनाथ विद्या आश्रम के सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, आदरणीय शिक्षकों एवं विद्यालय परिवार का हार्दिक आभार, जिन्होंने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से इस कार्यक्रम को विशेष बना दिया। आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ मैं फरहा आपसे विदा लेती हूँ। बच्चों, जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अमरनाथ विद्या आश्रम मथुरा।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल गोपाल। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय प्रातः के 10 बजे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। वनितालोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 27 जुलाई 2026 यानी कल को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग, कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलेश गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 122 25 575 पर

व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के सभी श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण और निवारण। श्रोताओं, आप मस्तिष्क एवं नसों के रोग जैसे मिर्गी, सिर दर्द, लकवा, माइग्रेन, सुन्नपन, झनझनाहट, कंपन, सियाटिका, याददाश्त का कम होना, पार्किंसन डिजीज आदि समस्या के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर नीलेश गुप्ता से, वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 27 जुलाई 2026 यानी कल दोपहर 1:15 से। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

सौतन फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। गीत को लिखा था सावन कुमार ने, संगीत था उषा खन्ना का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म वारिस से।

वारिस फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना और अब आपको सुनवाते हैं सावन को आने दो फिल्म का ये गीत। गीत को आवाज दी है जसपाल सिंह, कल्याण मित्रा और साथियों ने। गीत को लिखा है गौहर कानपुरी ने, संगीत है राजकमल का। आइए सुनते हैं कल्याणी मित्रा, जसपाल सिंह और साथियों की आवाज में सावन को आने दो फिल्म का ये खूबसूरत नगमा।

सावन को आने दो, इस फिल्म का ये गीत आपने अभी सुना। और आइए अब सुनते हैं फिल्म उत्सव से ये गीत। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले और लता मंगेशकर ने। संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आपने ये गीत सुना कालीचरण फिल्म का। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपने सुना मौसम फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था गुलजार ने, संगीत था मदन मोहन का।

रामपुर का लक्ष्मण, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत था आरडी बर्मन का। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 27 जुलाई सन 2026 को यानी कल अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग, कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलेश गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मस्तिष्क एवं नसों के रोग, कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के सभी श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग, कारण और निवारण। श्रोताओं, आप मस्तिष्क एवं नसों के रोग जैसे मिर्गी, सिरदर्द, लकवा, माइग्रेन, सुन्नपन, झनझनाहट, कंपन, सियाटिका, याददाश्त का कम होना, पार्किंसन डिसीज आदि समस्या के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर नीलेश गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 27 जुलाई 2026 और समय अपराह्न 1:15 से। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई और आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का ये अगला नगमा।

0: विवाह फिल्म का ये गीत आपने सुना उदित नारायण और श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में। गीत संगीत रविंद्र जैन का था।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

बी प्राक की आवाज में आपने सुना केसरी फिल्म का ये गीत, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10:55 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता से सीधे संवाद का कार्यक्रम मन की बात। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव,
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं।

जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए, इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए, हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। PV सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं।

मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय

हो रहा वगु देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है, हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगु भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था, आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है।
मेरे प्यारे देशवासियों,

हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता

का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मना

0: हमारे माता-पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 11:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं की फोन कॉल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं देवराज कृष्ण दीक्षित।
4: हेलो हेलो आकाशवाणी हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हाँ श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 STD कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो आकाशवाणी
1: परमार्दी महोदय, स्वागत का प्रेम प्यार है, नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिंह की मथुरा से आरडी दीक्षित जी को करता हूँ सादर नमस्कार, धन्यवाद के साथ।
0: नमस्कार नमस्कार प्रजापति जी, क्या हाल चाल है?
1: आपका आशीर्वाद बाकी प्यारी कृपा है, घर परिवार में आनंद से है, हम भी स्वस्थ है, मस्त है, रेडियो सुनने में रहते व्यस्त है।
0: जी हमारे कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं आप?
1: निसंदेह मैं एक नियमित श्रोता हूँ आकाशवाणी मथुरा वृंदावन को, और हमेशा सुनते रहता हूँ, आप लोगों से वार्तालाप करता हूँ, बहुत ही अच्छा और सुखद अनुभूत होती है।
0: जी जी बताइए, आज के कार्यक्रम में क्या फरमाइश है आपकी?
1: मानवर, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है जब वी मेट।
0: जी
1: राशिद खान साहब ने गीत को गाया, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना, बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी।
1: जी हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो आकाशवाणी।
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
0: मैं ब्रज रेडियो श्रोता में सांवरिया गांव खैरावत तहसील कुबेर जिला डीग राजस्थान से दीक्षित जी। नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसे हैं सांवरिया जी?
0: बिल्कुल ठीक है, आप बताओ।
1: हम भी अच्छे हैं। आपके गांव में क्या कर रहे हैं लोग बाग?
0: बरसात कम हुई है अब की बार।
1: अच्छा,
0: हाँ।
1: धान की फसल करते हैं आप?
0: नहीं, हमारे यहाँ तो चार बजरा ही होता है।
1: जी जी, बताइए सांवरिया जी, आज क्या फरमाइश है आपकी?
0: आज सुनवाइए साहब, उपहार
1: जी।
0: मैं अपनी करानी
1: लीजिए, सुनिए अपनी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार जी, दीक्षित जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी
1: जी। दीक्षित जी नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका।
1: जी धन्यवाद सर। सर मैं आपका नियमित श्रोता, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राणा, सिहोरा मथुरा से।
0: चौधरी साहब क्या हाल चाल है?
1: एकदम फर्स्ट क्लास है, हालचाल बढ़िया है। आप बताएं आप कैसे हैं सर?
0: एकदम अच्छे हैं हम भी, सभी लोग। और मौसम अब तो सुहावना हो गया है, खुशनुमा हो गया है।
1: मौसम खुशनुमा है यानी खूबसूरत।
0: और खेती के काम शुरू हो गए हैं?
1: हाँ, खेती में सर क्या है कि धान की रुपाई हो रही है। देखिए ऐसा है कि गर्मी से सभी लोग व्याकुल थे, पशु पक्षी जीव जंतु।
0: बारिश आने से धरती जो है प्रसन्न हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है।
1: बिल्कुल सर, मन मयूर नाच उठाए और कोयल भी गुनगुनाने लगी है।
0: बिल्कुल, बताइए आज ऐसे मौसम में कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
1: फिल्म का नाम है आप आए बाहर आए, लता जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत है, कोयल क्यों गाए, साथ में रफी भी है सर। ये गाना सर आपको डेडिकेट करना चाहूंगा मैं, आप भी सुनिएगा।
0: खूबसूरत गीत है, अवश्य सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारी कॉल शामिल करने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी
1: सर, गांव मनोरथ में गिरीश बोल रहा हूँ।
0: गिरीश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर जी, आप सुनाइए।
0: एकदम अच्छे हैं हम भी। आपके गांव में कैसे हैं सब?
1: सब बढ़िया है सर जी। मौसम माहौल ज्यादा खराब हो गया है, बारिश पड़ रही है रोजीना, खेती बाड़ी सब तहस नहस कर दिया इसने।
0: ज्यादा बारिश हो गई है?
1: ज्यादा बारिश से खेत में नुकसान हो गया सर, गोभी की और पत्ता गोभी की और भिंडी तोड़ाई सब।
0: जी जी, कहीं बारिश कम है कहीं अधिक हो रही है।
1: हाँ सर जी,
0: बताइए गिरीश जी, आज क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
1: सर

0: आई मिलन की रात और गाना है कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की।
1: लीजिए सुनवाते हैं गिरीश जी की फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर जी, मैं नाम बताना चाहता हूँ दोस्तों
1: जी।
0: हमारे श्यामवीर भाई साहब हैं, उमेश भाई साहब हैं, हमारे विष्णु कुशवाहा जी हैं और हमारे पंडित भाई हैं।
1: सुनवाते हैं आप सभी मित्रों की फरमाइश पर ये गीत, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल जी ग्राम नगर विजयी राया आपसे मुखातिब हूँ जी।
0: नेत्रपाल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सर आपका स्वास्थ्य और आपकी स्वास्थ्य कैसा सर?
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं।
1: आज भी फिर मैं मेरे जीवन साथी
0: बोल क्या है गाने के
1: खो गए दिल के चैन।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति थी देवराज कृष्ण दीक्षित की। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्मी कव्वाली।
1: लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर।
0: फिल्मी कव्वाली में आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की ये पहली कव्वाली आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म है काला समुंदर।
1: लुटी जागीर लेकर जल तकदीर लेकर क्या करोगे क्या

0: झुक गई है
1: वो निगा क्यों झुक गई है
0: अजी घबरा गए क्या
1: कहो शर्मा गए क्या
0: अभी है रात बाकी
1: अभी है बात बाकी।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे काला समुंदर फिल्म की ये कवाली। और लीजिए अब सुनिए हंसते जख्म फिल्म की अगली कवाली, मोहम्मद रफी और बलवीर की आवाजों में।

محبت سزا ہے یہ مانا میری جان، محبت

मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की आवाज़ों में अभी आपने सुनी हंसते ज़ख्म फिल्म की ये कव्वाली। और लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में फूल और पत्थर फिल्म की ये अगली कव्वाली।

لمبا سا قد یہ لچکدار باہیں یہ تپتا بدن یہ پگھلتی نگاہیں کچھ

0: मर गए।
1: ये शोला मेरे सामने से हटा लो,
2: ये शोला मेरे सामने से हटा लो,
1: हटा लो बचा लो

डरे लग ना जाए, छुपा लो मुझे अपने दिल में, छुपा लो मुझे अपने दिल में, छुपा लो मुझे अपने दिल में छुपा।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में गाई फिल्म फूल और पत्थर की कव्वाली। और लीजिए आप सुनिए फिल्म कव्वाली में फ़कीरा फिल्म की अगली कव्वाली, जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार जयप्रकाश दीक्षित की आवाज में गाए कुछ ब्रज लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे जयप्रकाश दीक्षित की आवाज में गाए कुछ ब्रज लोक गीत। कार्यक्रम ब्रज लोक गीत में अभी हम आपको और सुनवाएंगे कार्यक्रम के ब्रज लोक गीत, मगर इस अंतराल के बाद।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
8: आराम से मैडम।
7: क्या?
8: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
9: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में डोरीलाल गोला के स्वर में गाया ये ब्रज लोक गीत।

102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी दे दें आवश्यक सूचना के संबंध में। श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 27 जुलाई 2026 को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण एवं

निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलेश गुप्ता, जो कि वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन है। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर

प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण एवं निवारण। श्रोताओं, यदि आप मस्तिष्क एवं नसों के रोग जैसे मिर्गी, सिरदर्द, लकवा, माइग्रेन, सूंढ़पन, झंझनाहट, कंपन, सियाटिका, याददाश्त का कम होना, पार्किंसन डिसीज आदि समस्या के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर नीलेश गुप्ता, जो कि वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन है। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 27 जुलाई 2026 और समय होगा अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 1:00 को अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से यह विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश

0: के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे काला सागर से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन कर लें। परामर्श में कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के संबंध में। अब से कुछ ही पलों में यानी 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इस मास का गीत। स्वर होंगी अंशना सक्सेना और नरेश मल्होत्रा के, गीत होगा ब्रह्मानंद जी और संगीत नरेश मल्होत्रा का होगा। 1:15 पर आप सुनेंगे झलकी, शीर्षक होगा घर परिवार। 1:30 पर होगा कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ, प्रस्तुति होगी ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की। 1:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। दिन में 2 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। दिन में 2:30 का समय रहेगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का। हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5:30 पर युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी के साथ। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा कारगिल दिवस और मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 1:06 पर आप सुनेंगे देशगान और 6:15 पर आप सुनेंगे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। चर्चा का विषय होगा खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही मन भावन कार्यक्रम आप इसमें सुन सकेंगे। शाम 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या वंदन। शाम 7:05 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक का। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज काव्य मकरंद के अंतर्गत उद्धव शतक सौ पाठ। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन सकेंगे आज शाम 7:31 पर। 8 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:30 का समय रहेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुहाने तराने। 9:30 का समय रहेगा कार्यक्रम सबरस का। 10 आप सुनेंगे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। अब हम आपको जानकारी दे रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के संबंध में।

श्रोताओं, अब हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से एक आवश्यक सूचना के संबंध में। श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 27 जुलाई 2026 को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलेश गुप्ता, जो कि वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन है। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में

0: मस्तिष्क एवं नसों के रोग, कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग, कारण एवं निवारण। श्रोताओं, यदि आप मस्तिष्क एवं नसों के रोग जैसे मिर्गी, सिरदर्द, लकवा, माइग्रेन, सुन्नपन, झंझनाहट, कंपन, सियाटिका, याददाश्त का कम होना, पार्किंसन डिसीज आदि समस्या के समाधान के लिए प्रश्न पूछेंगे, सवाल पूछ सकते हैं आप डॉक्टर नीलेश गुप्ता, जो कि वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन हैं। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 27 जुलाई 2026 और समय होगा अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई।
1: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुँचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न 1:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस मास का गीत। स्वर है आंशुना सक्सेना और नरेश मल्होत्रा की, गीत लिखा है ब्रह्मानंद जी का, संगीत है नरेश मल्होत्रा का।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: अभी आप सुन रहे थे इस मास का गीत, स्वर थे अंशुना सक्सेना और नलेश मल्होत्रा के. FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है. लीजिए अब सुनिए झलकी. शीर्षक है घर परिवार, लेखक हैं SP सिंह, प्रस्तुति राजेश सिंह की है.
2: घर परिवार प्रस्तुत है SP सिंह की लिखी झलकी, इसके प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश सिंह.

0: आ गए बीबी के गुलाम, मेरी प्यारी छोटी भाभी। भैया यानी ये जोरू के गुलाम आज नीचे ही अपनी प्यारी बहन भाभियों के साथ चाय पियेंगे। क्यों गुलाम जी?
1: मार खाएगी शैतान कहीं की।
0: लो जी चढ़ गई अटारी पर, हम तो कुछ है ही नहीं, हमारे लिए चाय तक नहीं बनाई। जाओ भैया तुम भी जाओ, तुम्हारा भी बीबी बिना जी नहीं लग रहा होगा। अगर अभी नहीं गए तो देख लेना, रात के खाने में सबको तेज नमक ही खाना पड़ेगा।
2: अरे चुप भी कर, जा बेटे तू ही ऊपर जा, पता नहीं क्यों तेरी बहू हम सबसे नाराज सी रहती है।
3: माँ जी यह तो आप गलत कह रही हैं, हम सब यहाँ क्या गैर हैं जो हमें छोड़कर अकेले ऊपर चाय पी जाएगी। यहाँ इस घर में वही रानी बहू है जो अटारी पर चढ़ी रहती हैं, हमारे साथ कभी भी घुल मिलकर नहीं बैठती। बस सारा रिश्ता विजय लाला से ही है, हमसे तो कोई नाता ही नहीं।
0: नहीं भाभी, वह पढ़ी लिखी ऊंचे घराने की हैं, उनके भाई जनरल मैनेजर हैं, वे सभ्य लोग हैं, हम क्या जाने रहने की तमीज। चाय तो वही डाइनिंग टेबल पर पी जाती है। तुम बड़ी भाभी एकदम फूहड़ हो, बैठ जाती हो पसर कर पलंग पे, तुम्हारे साथ कैसे पी सकती हैं वो चाय।
1: खबरदार आशा जो आगे कुछ बोली, बहुत जवान चलाना सीख गई है, जब यहाँ ये हाल है तो शादी के बाद क्या करेगी। राधा को देखा है, कितना सुनाते हो तुम सब उसे, एक शब्द भी विरोध में बोली है वह कभी।
0: हाँ जी वह आपकी राधा नक्षत्र है और आप उनके चांद। जाओ भाई ऊपर, बड़े भैया अब तक आते ही भाभी के साथ कभी कमरे में नहीं घुसते, एक तुम हो कि शर्म नहीं आती।
3: सही बात तो कह रही है आशा दीदी, अम्मा जी आपने ही विजय को छूट दे रखी है। देखो बीच वाले देवर भी ऐसा नहीं करते, अगर अभी से बीबी के गुलाम बनकर रहे तो जिंदगी नहीं चलेगी।
1: तुम लोग तो बस

0: राधा, तुमने बुरा तो नहीं माना?
1: नहीं जी, जब आपके घर वालों को मैं बुरी लगती हूँ तो मायके ही चली जाती हूँ। हमारे घर में तो इतनी शांति रहती है कि कहीं हाय तौबा या बेहूदगी दिखाई तक नहीं पड़ती। ये आशा दीदी कितना बोलती हैं, मैं तो कभी अपनी भैया भाभी से ऐसी बदतमीजी से बोल ही नहीं सकती। बड़ी भाभी भी तो उन्हें शह देती रहती हैं, यहाँ तो मुझे बाहर की लड़की समझकर

0: पराया ही माना जाता है।
1: राधा छोड़ो भी इन बातों को, इसे हमारे घर की रीति ही समझ लो। ये सब लोग तुम्हारे साथ घुल मिलकर बैठना चाहते हैं, तुम तो शायद इन्हें अभी समझ ही नहीं सकी हो जो इतनी कटी कटी रहती हो। अरे हमारी दूसरी भाभी जब आई थी तब हम उन्हें भी चढ़ाते थे, पर कभी भी बुरा नहीं माना उन्होंने, हमेशा हंसती ही रहती थी।
0: लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब मुझसे जलन मानते हैं।
1: तुम्हें इन सबके साथ हिलमिलकर बैठने की आदत डालनी चाहिए, तुम उबती नहीं अकेले ऊपर बैठे बैठे। तुम्हारे घर में तो मुझे ऐसा लगता है इंसान नहीं मशीनें रहती हैं, सभी अपने आप में लीन, किसी को किसी की फिक्र नहीं। जहां आदमी होंगे बोलेंगे हंसेंगे और लड़ेंगे भी। अच्छा जाओ एक कप चाय ले आओ। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं मंगवाता हूँ चाय।
0: नहीं नहीं मुझे लाने दो, वरना वो लोग बोलेंगे कि बीबी ने सिखाया होगा।
1: नहीं तुम नहीं जाओगी। बड़ी भाभी, आशा, अरे कोई है, मेरे लिए चाय बनाकर भेजो।
2: क्यों अपनी महारानी से नहीं कह सकते?
1: महारानियां तो बैठकर राज करने के लिए होती हैं। चल नौकरानी तू ही चाय बना।
2: देख लो माँ, मान लेना भैया। छोड़, कान छोड़ना।
3: इतनी बड़ी लड़की के कान पकड़ता है, शर्म नहीं आती तुझे?
1: बड़ी भाभी अब तुम मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखती, पहले उठकर मुझे खाना देती थी, अब बैठी रहती हो। जब तुम मुझे नहीं पूछोगी तो बनूंगा उसी का गुलाम। मैं तो खाने का गुलाम हूँ, जो मेरा पेट भरेगा मैं तो उसी का ही गुलाम बनूंगा।
3: लगता है महारानी से लड़ाई हो गई है, तभी आ गए नीचे भाभी के पास थाली के बैगन।
1: लड़ाई हो मेरे दुश्मनों की, फाड़ में जाओ तुम सब औरतें, मैं खुद ही बना लेता हूँ चाय, और कहो तो तुम सबको बनाकर पिला दूं। बस तुम लोग सज धज कर बैठी रहो, और मर्दों के घर आते ही तानाकशी करो, खूब लड़ाई करो। ठीक है कल से ही मैं घर पे ही नहीं आया करूंगा, बाहर होटल में चाय पी लिया करूंगा, फिर कुछ मत कहना।
3: किस लिए गुस्सा होते हो विजयलाला? चाय मैं अभी बना देती हूँ, मूड क्यों खराब कर रहे हो? जाओ अगर फिल्म जाने का मन है तो चले जाओ, अब भी समय है, 5:45 ही तो बजे हैं।
0: भैया आज ही चले जाओ, नहीं तो कल मजले भैया भाभी बिजनौर से आ रहे हैं, और गजेंद्र भैया भी दिवाली की छुट्टियों में कल आ रहे हैं, फिर जाना नहीं होगा।
1: शैतान कहीं की, पहले ही ना लड़ती तो क्यों देर होती। राधा, ओ राधा आओ नीचे, चलो जरा घूम के आते हैं।
2: हाँ नहीं भाभी, चाय नाश्ता मैं ला रही हूँ, तुम झटपट तैयार हो जाओ।
0: अरे अभी तो इतना लड़ रहे थे और अब लाड़ हो रहा है, पता नहीं ये लोग कैसे हैं।

0: ये लीजिए, ये टॉकीज भी हाउसफुल। देख लिया आपने अपने घर वालों का रवैया? अरे अगर पहले ही जाने दिया होता तो क्यों देरी होती? पहले लड़ते हैं फिर प्यार करते हैं, ये भी कोई बात है? सब नाटक करते हैं।
1: ओ राधा, ये नाटक नहीं, सच पूछो तो यह भी उनका मजाक और छेड़छाड़ है। तुम्हारे विवाह को कुल 2 माह हुए हैं, धीरे धीरे समझ जाओगी कि इनके दिलों में कपट नहीं है। कल छोटी भाभी आ रही हैं, देखना हम सब कैसा तंग करते हैं उन्हें। और सच पूछो तो वह भी खूब आनंद लेती हैं, देखा नहीं तुमने? मैंने बड़ी भाभी के मुंह पर टिकट फाड़ कर फेंक दिए थे, वह तो बुरा नहीं मानी।
0: सब बकवास है, मुझे ऐसे बेहूदे मजाक अच्छे नहीं लगते।
1: खैर छोड़ो, आओ तुम्हारे भैया भाभी को दिवाली की शुभकामनाएं अग्रिम दे आए। परसों दिवाली है, घर में चहल पहल हो गई तो जाना मुश्किल हो जाएगा।
0: क्यों, दिवाली के दिन भी मैं अपने घर नहीं जाऊंगी क्या?
1: ऐसी बात नहीं है राधा, तुम्हारी पहली दिवाली है, तुम्हारे कारण तो बिजनौर वाले भैया भाभी आ रहे हैं। देखना गजेंद्र आएगा तो कितना मजा आता है यहाँ।
0: तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा मजा, मैं तो जरूर मायके जाऊंगी उस दिन।
1: अच्छा भाई, परसों की बात परसों देखेंगे, चलो बाजार घूमते हुए तुम्हारे घर चलते हैं।

0: रुआंसी सी सूरत क्यों बना रखी है?
1: बीबी जी आप आ गए, आप ही चल के देख लीजिए। मालकिन काफी बीमार हैं, पर कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, सब अपने अपने मजे में मस्त हैं। आप ही कुछ कीजिए बीबी जी, आप ही कुछ कीजिए।
0: ठीक है रामू काका, तुम चलो मैं देखती हूँ। ओ माँ कैसी हो? सच तुम लोगों में से कोई भी मुझे देखने नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ कि आज फिल्म देखने निकले तो मुझे ये यहाँ ले आए।
2: अरे बेटी तू आ गई, अच्छा किया अच्छा किया। ये सामने अलमारी की चाबी रखी है, जरा मुझे दे दो। बेटे विजय ये 1200 रुपए हैं राधा की पहली दिवाली के लिए। मेरी तबीयत खराब है सो मैं बाजार से साड़ी नहीं ला पाई, तो खुद ही अपने लिए दिवाली की साड़ी फल और मिठाई ले लेना। क्या करूं मजबूरी है। और ये जोड़ों का दर्द शर्दी शुरू होते ही।
3: माँ जी हम रुपए लेने नहीं, आपसे इसे मिलाने आए हैं। जब राधा के भैया कार में ताश खेलने जा सकते हैं तो हमारे घर सामान भी ला सकते हैं। मेरी माँ इस तरह से नहीं लेगी, दिवाली का शगुन कायदे से भेजा जाता है।
2: क्या करूं बेटा, सब अपने आप में मस्त हैं। बड़ा सुनता है न छोटा, बहू को तो ताश खेलने और कितनी पार्टियों से ही फुर्सत नहीं।
1: बीबी जी ये लीजिए चाय।
0: लो विजय चाय पियो, ये लो।
3: चलो राधा देर हो जाएगी।
0: अच्छा माँ मैं चलती हूँ, तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखना। माँ चुप बेटे, माँ चुप हो जा।
3: अरे चलो भी राधा। अच्छा माँ जी नमस्ते।
2: नमस्ते बेटे नमस्ते।
3: देख लिया तुमने तुम्हारे घर में कैसी शांति है, तुम्हें ही मुबारक हो ऐसी शांति। किसी को किसी की परवाह नहीं, बीमार सास को छोड़कर ताश फेंकना जरूरी है। तुम्हारे भैया कार में दुनिया में तो घूम सकते हैं, मैं तो स्नेहवश आ गया था। जब उन्हें फुर्सत नहीं तो हम भी इतने गिरे हुए नहीं हैं।
0: छोड़ो फिर विजय अब।
3: क्यों भाई मेरी तरफ से कुछ चाहिए दिवाली का तोहफा तो अभी ले लो, साड़ी तो अम्मा तुम्हें देंगी ही। आज के दिन बड़े भैया सबके लिए कपड़े लाते हैं, धनतेरस जो है। हाँ कोई और तोहफा चाहिए तो बोलो।
0: नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
3: अच्छा राधा तुम घर जाओ, मैं सामने विनय को उसका पत्र दे आऊं। आज शाम को उसके बॉस ने मुझे उसे देने को दिया था, मैं बस अभी 1 मिनट में घर आया।
4: कलर की?
0: अरे साड़ी तो बस दो ही है इसमें, भैया दो ही लेके आए।
4: नहीं इसका कलर ज्यादा ठीक है,
0: वो वाली वापस करा दो।
4: अम्मा यही राधा भाभी पर अच्छी लगेगी।
0: अम्मा नई भाभी बिल्कुल गुड़िया सी लगेगी।
4: हाँ माँ जी नई बहू है और है भी काफी गोरी, गुलाबी रंग खिलेगा, आप यही ले लीजिए।
0: पर है भी तो 1000 रुपए की, वो 700 रुपए वाली ठीक रहेगी। नहीं अम्मा तुम मेरा सूट ये 300 वाला मत लो, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, तुम भाभी के लिए ले लो, पहली दिवाली है इस घर में उनकी। एक वो घर है जहां पैसा है शोहरत है पर सब दिखावा है, जहां परिवार के सदस्यों के लिए किसी को फुर्सत नहीं है, प्यार नहीं है। सच ही कहता है विजय वो घर मशीनों का घर है, यहां कितना प्यार है कितना त्याग है। सच गलती मेरी ही है, अब मैं इन सबके साथ घुल मिल के रहूंगी, सबके साथ मिलजुल के रहूंगी।
5: नमस्ते नई भाभी।
0: ओ गजेंद्र भैया आप हैं?
5: हाँ जी हमने सुना कि जोरू को गुलाम अपनी जोरू

0: के साथ फिल्म देखने गए हैं, तब हमने सोचा कि उन्हीं के कमरे में सफर की थकान उतार लें। नीचे तो सो नहीं सकते, बड़ा शोरगुल है।
1: क्यों घबराते हो देवर जी, पढ़ाई कर लो, आपको भी जल्दी से जोरू का गुलाम बना देंगे। हमें पता चला था कि हमारे प्रिय इकलौते देवर छुट्टियों में आ रहे हैं, तो बस हम उनके स्वागत में फिल्म छोड़कर चले आ रहे हैं।
0: वाह भाभी, बड़ी जल्दी ही रंगी हमारे रंग में,
1: देख लो।
2: भाई ऐसी हंसी की क्या बात है, हम भी तो सुने। और तू तो कल आने वाला था, आज कैसे अटपका?
0: हैरान करना चाहता था, पर तुम तो अपनी
1: जोरू के साथ गुलामी कर रहे थे, है ना?
2: अरे वाह राधा, तुम तो
0: क्यों भाभी, सारी फुलझड़ियां हंसी की आज ही छुड़ा लोगी या कुछ दिवाली के लिए भी रखोगी?
1: अरे भैया उस दिन तो पटाखे छूटेंगे, पटाखे।
3: अभी तक आप सुन रहे थे एसपी सिंह की लिखी झलकी घर परिवार। इसमें भाग लिया देवेंद्र प्रसाद शर्मा, नवनीत भटनागर, नीलम सिंह, मनीष श्रीवास्तव, साधना भार्गव, रेणुबाला द्विवेदी और मनीषा माथुर ने। इस झलकी को प्रस्तुत किया राजेश सिंह ने।
4: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
5: आराम से मैडम।
4: क्या
5: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
6: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
7: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झलकी, शीर्षक था घर परिवार, लेखक थे एसपी सिंह, प्रस्तुति राजेश सिंह की थी। FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। प्रस्तुति है ओपी सिंह की और देवराज कृष्ण दीक्षित की।

0: श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ इस कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारे साथ ओपी सिंह साहब हैं हमेशा की तरह, और श्रोताओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं, श्रोताओं की जो सुझाव हैं, उनका उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ओपी सिंह साहब।
1: नमस्कार देवराज जी, और सभी श्रोताओं का मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं कि वो फोन कॉल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से और SMS के माध्यम से जुड़ेंगे। जब तक श्रोता हमसे जुड़ते हैं, कुछ ऐसी बातें कि जो श्रोताओं और हमारे बीच कार्यक्रमों के माध्यम से होती है और अक्सर होती रहती है, क्योंकि रेडियो के जो कार्यक्रम है देवराज जी, आप देखते होंगे कि वो जीवन से जुड़े हुए हैं, परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवेश से जुड़े हुए हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो जो दिन प्रतिदिन घटित हो रहा है वही रेडियो जीता है, वही लोगों के साथ संबंध बनाता है और उन्हीं पर कार्यक्रम होते हैं। तो अब आगे आने वाले जो समय में मुड़िया मेला आ रहा है
0: जी,
1: अभी हमने पर्यावरण की बात की, पौधरोपण की बात की, लेकिन अब आगे आने वाले समय में जैसा कि बारिश हो रही है, आसपास पानी भरेगा, साफ सफाई की बात हो रही है, आजकल एक ब्रज वैभव अभियान जिला प्रशासन बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से मिलकर के कर रहा है, तो जो साफ सफाई हमारे जीवन में होनी चाहिए और उसका जो महत्व है वो बहुत हम और आप ही नहीं रेखांकित कर रहे, बल्कि अब वो समाज और संस्थाएं भी उस चीज के महत्व को समझ रही हैं और उसको जीवन में उतार रही हैं।
0: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब इस तरह की जो अभियान चलते हैं और सामाजिक सुधार के कार्य चलते हैं, तो अगर उनमें समाज है, जनता है, अगर जुड़ जाती है और तन मन से सहयोग भी करती है, तो निश्चित रूप से ये अभियान सफल भी होते हैं।
1: जी जी, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी अभियान तभी है जब जनता का बनता है।
0: बिल्कुल।
1: तो जनता

0: का सहयोग बहुत आवश्यक है। तो इन आने वाले समय में ये जो अभियान चल रहा है इसको समर्थन दें, और अपनी व्यक्तिगत और आसपास की जो साफ सफाई है, परिवेश की सफाई है, अभी हमने हेल्थ पे जो कार्यक्रम
1: जी
0: किया वहाँ भी हमने देखा कि डॉक्टर भी इस बात को कह रहे हैं कि पर्सनल हाइजीन, आसपास का हाइजीन, स्वच्छता जीवन में इतना मायने रखती है
1: बिल्कुल
0: कि अगर हम स्वच्छता को ही मेंटेन कर लेते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से इस अभियान को जन भागीदारी का अभियान बनाया।
1: बिल्कुल
0: अगर हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में बहुत कुछ चीज़ें बदली हैं, बहुत कुछ सोच में परिवर्तन आया, बहुत कुछ समाज में परिवर्तन आया, और बहुत कुछ संस्कारों में भी परिवर्तन आया है जो है।
1: बिल्कुल। और साफ सफाई का जहां तक प्रश्न है तो साफ सफाई सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है।
0: जी
1: अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने आसपास की, अपने पर्यावरण की और अपने समाज को साफ सुथरा रखना हमारा सबका कर्तव्य है।
0: जी जी तो इसी से जब तक फोन आ रहा है मैं एक SMS ले लेता हूँ।
1: जी जी
0: और ये
1: बिल्कुल
0: हमारे वही हैं प्रकाश राही जी लिखते हैं गोवर्धन से, इन्होंने इसी बात को बढ़ाया है कि आजकल पत्र पत्रिकाओं में और खबरों में ये जो ब्रज वैभव अभियान है
1: जी
0: इस पर काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है, और जन सहयोग से ये एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। तो क्यों ना आकाशवाणी भी इस कार्यक्रम पर कोई एक अच्छा, चाहे संवाद का हो, चाहे कोई भेंट वार्ता हो, चाहे कोई वार्ता हो जिला प्रशासन के माध्यम से या उन सहयोगी और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के माध्यम से अगर
1: जी
0: श्रोताओं को लेके आती है, श्रोताओं को जोड़ती है तो अच्छा होगा है। और मुझे लगता है ये एक अच्छा सुझाव है इनका।
1: बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है। और जब सभी लोग एक साथ मिलकर के किसी काम को करने का संकल्प ले लेते हैं और उसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग देते हैं तो निश्चित ही सामाजिक परिवर्तन आता है और लोगों का जीवन में भी परिवर्तन आता है।
0: तो लोग जुड़ते हैं तो तभी कोई सफल अभियान बनता है। और देखिए जुड़ाव शुरू हो रहा है, ये फोन कॉल की
1: जी
0: घंटी बज
1: जी
0: रही है तो उठा लीजिए इसको।
1: लेते हैं फोन कॉल्स। हेलो,
2: हेलो, श्रोताओं की बात फोन कॉल के साथ। क्या
1: स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
2: दशा प्रेम, क्या है, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार। अपना परिचय दे करके अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव व्यक्त करें सर।
2: मानवर में आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा चिट्टी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। कार्यक्रम का नाम है श्रोताओं की बात फोन कॉल के साथ। आदरणीय ओपी सिंह साहब को भी सादर सा प्रेम, प्यार है, नमस्कार।
0: बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत आपका। कार्यक्रमों पे
2: जी हृदय
0: प्रतिक्रिया दीजिए।
2: धन्यवाद, काफी दिनों के पश्चात इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है,
0: जी
2: मुझे बेहद और खुशी प्रसन्नता हो रही है। मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और आप लोगों की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।
0: प्रोग्राम के बारे में बताइए, मथुरा आकाशवाणी कैसा कर रही है आप लोगों के लिए, सेवा कर पा रही है ठीक से?
2: मानवर, मैं एक नियमित श्रोता हूँ आकाशवाणी मथुरा वृंदावन का, और इस वक्त जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से वो बहुत ही साफ स्पष्ट और बहुत ही अच्छे स्वर में सुनाई पड़ रहे हैं। हमें कार्यक्रम से जुड़ना और कार्यक्रम सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते हैं, हास्य नाटिकाएं आती हैं और फोन इन प्रोग्राम तो सबसे ज्यादा पसंद करते
0: तो
2: हैं।
0: इस बीक जो कोई प्रोग्राम आपको ज्यादा रुचिकर लगा हो, जिसने आपको ज्यादा मार्गदर्शन किया हो, कुछ विशेष टिप्पणी?
2: मानवर, जैसा कि जो डॉक्टरों के साथ में परिचर्चाएं होती हैं, ब्रज माधुरी है, ब्रज लोकगीत हैं और ब्रज दर्पण है, ये कार्यक्रम तो हमें अच्छे लगते हैं। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी जाती हैं, और आपके द्वारा जो फाइल्स के ऊपर एक कार्यक्रम किया गया था डॉक्टर तिवारी जी के साथ में, वो भी बहुत अच्छा और विस्तार से इस पर चर्चा की गई थी और
0: जी
2: बहुत अच्छी परिचर्चा थी डॉक्टर साहब के साथ में। इतनी सटीक और सुंदर जानकारी के लिए मैं ओपी सिंह साहब को धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब के साथ में। और आदरणीय दीक्षित जी ने एक कार्यक्रम प्रसारित किया था डॉक्टर साहब के साथ में, जोड़ों का दर्द, जोड़ों से समस्याएं और उसका रिप्लेसमेंट यानी जोड़ों का जो
1: प्रत्यारोपण
2: प्रत्यारोपण
1: है।
2: होता है
1: जी
2: इसके संबंध बहुत अच्छी जानकारी दीक्षित साहब के द्वारा दी गई थी और बहुत अच्छी परिचर्चा थी। आप दोनों को मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ इतनी सुंदर और सटीक जानकारी श्रोताओं को उपलब्ध कराने के लिए।
0: चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने विस्तार से आकाशवाणी मथुरा के कार्यक्रम सुने, उन पर प्रतिक्रिया दी, उनको सराहा नवाजा, तो और हमसे जुड़े फोन कॉल के माध्यम से। तो अभी समय इतना ही है कि हम आपको धन्यवाद करते हैं और लेते हैं अगला जो कॉल आ रहा है उसको। धन्यवाद।

0: प्रजापति जी,
1: आपको सादर नमस्कार करते हुए धन्यवाद करता हूँ इतने अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। सादर नमस्कार।
2: नमस्कार। और अब अगला फोन लेते हैं
3: जी।
2: स्वागत है, अपना परिचय दीजिए सर, कौन से श्रोता बोल रहे हैं?
4: आदरणीय दीक्षित जी नमस्कार।
2: नमस्कार, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं ओपी सिंह साहब।
4: आदरणीय सिंह साहब और दीक्षित साहब को मेरा नमस्कार।
3: प्रणाम कर रहे हैं, बताइए सर, परिचय के साथ प्रतिक्रिया कार्यक्रमों पर आपकी क्या है?
4: सर मैं आपका नियमित श्रोता ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह ग्राम नगला राणा चिहोरा।
3: जी जी, इस बार के इस वीक के जो प्रोग्राम आपको कैसे लगे बताएं?
4: पिछले दिनों सर आकाशवाणी संग्रहालय से प्राप्त शनिवार दिनांक
2: जी
4: 18/7/2026 को सुबह 10:30 पर महान गायक रविंद्र जैन साहब को सुना, जिनसे बातचीत कर रहे थे आकाशवाणी प्रतिनिधि यानी पूर्व उद्घोषक राधा बिहारी गोस्वामी जी।
2: जी
3: जी जी, दोनों रेडियो की और कला जगत की हस्तियां, राधा बिहारी गोस्वामी जी ने आकाशवाणी की बहुत लंबे समय तक ब्रज क्षेत्र की मिलके संस्कृति सभ्यता की सेवा की, वो हमारे आदरणीय हैं। वो रविंद्र जैन साहब से बात कर रहे हैं, आपको अच्छी लगी इसके लिए तो धन्यवाद देते हैं।
4: इतना बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था, दिल को छू गया, मन को छू गया, ये कहें कि आपके लिए धन्यवाद कि ऐसी यादगार यादें आपने संजो कर रखी है।
3: ये दीक्षित जी से धन्यवाद दीजिए इनको, इन्होंने जो है लगाया प्रोग्राम।
2: देखिए चौधरी साहब, जब हम श्रोताओं के दिल की बात को महसूस कर लेते हैं तो उसी हिसाब से हम अपने प्रोग्रामों को शेड्यूल्ड करते हैं और कार्यक्रमों को सुनवाते हैं, और निश्चित रूप से आप जैसे श्रोता जब इन कार्यक्रमों को सुनते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और श्रोताओं को भी पसंद आते हैं। आपको पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के शुभ अवसर पर कुछ और रेडियो से संबंधित जुड़ी बातें सुनी कि रेडियो का क्या महत्व है, शिक्षा सूचना और मनोरंजन को लेके आकाशवाणी की जो एक विशेष भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसके लिए समस्त प्रसारण कर्मियों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।
3: चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: एक निवेदन करेंगे सर सिंह साहब आप।
3: जी जी बताएं।
4: आकाशवाणी मथुरा से जब जब फिल्म संगीत प्रसारित किया जाता है तो यहाँ के जो ब्रॉडकास्टर है उनसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि फिल्म के साथ गीत और संगीतकार का नाम जरूर बोला करें।
2: जी जी बिल्कुल,
3: ये सुझाव आपका नोट करते हैं और सभी को बताते हैं कि भाई गीतकार संगीतकार का भी नाम जाना चाहिए, क्योंकि वो टीम का हिस्सा है, होना चाहिए नाम उसका, क्यों नहीं होना चाहिए। तो चलिए, सारे नाम जो गीत के साथ बोले जाने चाहिए ऐसा हो भविष्य में, हम सुनिश्चित करेंगे। बाकी आपने प्रतिक्रियाएं दी, आज आप हमसे जुड़े फोन के माध्यम से, इसके लिए महेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
4: जी धन्यवाद सर, नमस्कार।
2: नमस्कार। तो सिंह साहब, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ फोन के माध्यम से भी हमारे श्रोता जुड़े और
3: SMS
2: के माध्यम से भी हमसे बातचीत हुई हमारे श्रोताओं की, और अब कार्यक्रम का समय संपन्न हो रहा है तो श्रोताओं से अनुमति लेने से पहले
3: जी कुछ फोन बता दें, कुछ पत्र
2: जी, जी,
3: का
2: जी,
3: पता बता दें तो थोड़ा ठीक रहेगा।
2: तो श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम के लिए फोन करने का जो नंबर है वो है 25-30-135, और मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड लगाकर हमें फोन कर सकते हैं, और फोन करने का समय यानी शुक्रवार के दिन 12:30 से हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करते हैं। और जो श्रोता SMS के माध्यम से यानी व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वे इस नंबर पर अपना संदेश भेज सकते हैं।
3: जी जी जी,
2: वो नंबर है 94-122-25-575।
3: जी, और जो पत्र लिखना चाहें
2: जी
3: उनको भी बता देते हैं कि भाई द्वारा केंद्र निदेशक, आप कार्यक्रम का नाम लिखिए, द्वारा केंद्र निदेशक करिए और आकाशवाणी मथुरा के पते पर भेज दीजिए, पिन कोड वही है 281003। तो पत्रों का भी स्वागत करते हैं, नाम भले ही बदल गया हो लेकिन पत्र हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहे।
2: बिल्कुल।
3: तो अभी तो समय यही कह रहा है कि
2: श्रोताओं से अनुमति ली जाए।
3: जी
2: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। प्रस्तुति थी ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की। श्रोताओं अब सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 27 जुलाई 2026 को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलेश गुप्ता जो कि वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन है। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565253015 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण एवं निवारण। श्रोताओं आप मस्तिष्क एवं नसों के रोग जैसे मिर्गी, सिरदर्द, लकवा, माइग्रेन, सुन्नपन, झंझनाहट, कंपन, सियाटिका, याददाश्त का कम होना, पार्किंसन डिसीज आदि समस्या के समाधान के लिए प्रश्न पूछिए डॉक्टर नीलेश गुप्ता वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन से। श्रोताओं ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 27 जुलाई 2026 और समय अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 1:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये पहला नगमा आपके रेडियो सेट पर उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। फिल्म है मन, गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है संजीव दर्शन ने।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मन में। और ये जब सुनिए फिल्म संगीत में पंकज उधास और साधना सरगम की आवाजों में गाया मोहरा फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है विजू शाह ने।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म है फना, गीत गाया है शान और कैलाश खेर ने। प्रसून जोशी का संगीत है जतिन ललित का, और गीत लिखा है प्रसून जोशी ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 102.2 MHz पर, यह आकाशवाणी का मथुरा।

0: 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 2 बजने को अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले अंग्रेजी में फिर उसके बाद हिंदी में, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi remembers brave hearts of the nation on Kargil Vijay Divas today, says their sacrifices for the nation fill everyone with pride. In his Mann Ki Baat program, Mr. Modi lauds collective perseverance of Indian scientists and engineers, leading to country scaling new heights in defense production and space sector. Mr. Modi says he is proud of the nation's youth power, who've been performing exceptionally well in sports events and international Olympiads. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan lead the nation in paying tributes to country's brave soldiers for their supreme sacrifices during Kargil War. Government urges Indian nationals to assess the prevailing security situation before accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
2: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
2: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की।

0: पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता, यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है।
1: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. He urged people to honor weavers by encouraging handloom crafts and further strengthen the spirit of being vocal for local.
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: The Prime Minister also mentioned khadi, saying that khadi was very dear to Mahatma Gandhi.
0: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
1: Tomorrow, the 27th of July, marks the death anniversary of Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam. Mr. Modi said Dr. Kalam's personality embodied many inspiring facets, yet the role of a teacher was closest to his heart. Concluding his address, Mr. Modi spoke about Independence Day, which will be celebrated on the 15th of August. He urged all to share their myriad ideas and suggestions before the 15th of August, as always, on MyGov. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who had laid down their lives in the defence of the motherland. In a social media post, President Murmu said the unparalleled valour, unwavering resolve and supreme patriotism of the soldiers exemplify the finest traditions of the Indian Armed Forces. In Ladakh, Union Defence Minister Rajnath Singh today led the 27th Kargil Vijay Diwas commemorations at the Kargil War Memorial in Dras, paying homage to the brave hearts of the 1999 Kargil War. The Raksha Mantri laid a wreath at the cenotaph and paid tributes to the soldiers who made the supreme sacrifice during Operation Vijay. Addressing the gathering, Mr. Rajnath Singh said, the Kargil War was not only India's military and diplomatic victory, but also a defining moment when the world witnessed the indomitable courage and valour of Indian soldiers. More from our correspondent.
2: Union Defense Minister Rajnath Singh today led the 27th Kargil Vijay Diwas commemoration at the Kargil War Memorial in Dras by paying homage to the brave hearts of the 1999 Kargil War. Addressing the

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा

0: करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
1: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
0: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024

0: इसमें संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डोरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालेम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय

0: नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं चित्रा और शान की आवाजों में। फिल्म का नाम है मैं प्रेम की दीवानी हूँ। गीत लिखा है देव कोहली ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

चित्रा और शान की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म का ये गीत। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म है ऐतराज़। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है

0: अभी आप सुन रहे थे एतराज फिल्म का ये गीत जिसे गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। फिल्म है बादल।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में अभी आपने सुना बादल फिल्म का गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनाएंगे इस कार्यक्रम संबंधी सूचना के बाद। श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 27 जुलाई 2026 को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क।

एवं नसों के रोग कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलेश गुप्ता, जो कि वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन है। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-23-25-30-135, टेलीफोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-25-30-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण एवं निवारण। श्रोताओं, आप मस्तिष्क एवं नसों के रोग जैसे मिर्गी, सिरदर्द, लकवा, माइग्रेन, सुन्नपन, झंझनाहट, कंपन, सियाटिका, याददाश्त की कमी, पर्सनिस्कन, पर्किंसन डिसीज आदि समस्याओं के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर नीलेश गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 27 जुलाई 2026 और समय होगा अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत कार्यक्रम में। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का यह अगला गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म है बरसात, गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू को अभी आप सुन रहे थे फिल्म बरसात में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला और अंतिम गीत। अभिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म है चलते चलते। इस गीत को लिखा है जतिन ललित ने और संगीत दिया है जावेद अख्तर ने।

अभिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में गाए फिल्म चलते चलते के इसी गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की प्रथम सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आज शाम 5:30 पर हमारी आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। 5:30 हुए हैं, हमारी ये सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युग वाणी।

साथियों को हमारा नमस्कार। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ। इसमें भारत की विजय हुई। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस हम हर वर्ष आज ही के दिन मनाते हैं, यानी 26 जुलाई को। ये तो बात हुई कारगिल विजय दिवस की, और अब सुनते हैं ये गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों को। फिल्म का नाम था वीर चारा। मैग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आज ही के दिन यानी 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसका आरंभ वर्ष 2015 में यूनेस्को द्वारा इन विशेष वनों के बचाव और उनके महत्व को समझाने के लिए की गई थी। इस विषय से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़ाना, तटीय सुरक्षा, वन समुद्र की ऊंची लहरों, तूफानों, कटाव से जमीन और तटीय घरों की रक्षा करने के लिए तटीय सुरक्षा का ध्यान रखना, जीवों का घर, कई तरह की मछलियों, समुद्री जीवों के लिए सुरक्षित बच्चे पैदा करने की जगह में काम करने के लिए जीवों का घर बनाया जाता है। ये जानकारी थी मैग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण की। और आइए अब सुनते हैं।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म शक्ति में।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.

दोस्तों आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों को फिल्म शराबी में। और अब इस गीत के साथ ही आज का युववाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
2: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें

0: गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। करगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: कैच दी रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। हरारे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 192 रन बनाए। और ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे देशगान। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा 6:15 पर। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मृदुल कुमार पांडे। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण और प्रधानमंत्री फसल योजना के बारे में। इसके अलावा आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के लोकगीत मन भावन क्रम में। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में 7:05 पर हम आपको सुनवाएंगे उद्धव शतक सौपाठ। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्याम सुहानी आप सुन सकते हैं 7:31 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात्रि 8:00। देशगान एक बार पुनः आप सुनेंगे 8:20 पर। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे 8:30 पर। आज की फिल्म होगी ब्रज भूमि। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक लोकगीतों का कार्यक्रम सब रस। आज का विषय रहेगा गुरु पूर्णिमा पर। रात्रि 10:00 आप सुन सकते हैं रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से लेकरेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

आप सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में सोमवार यानी 27 जुलाई 2026 कल अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलेश गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोफिजिशियन। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 122 25 575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। विषय रहेगा मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण और निवारण। मथुरा से बाहर के श्रोता कोड 0565 लगाएं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क एवं नसों के रोग कारण और निवारण। यदि आप मस्तिष्क एवं नसों के रोग जैसे मिर्गी, सिर दर्द, लकवा, माइग्रेन, सुन्नपन, झंझनाहट, कंपन, सियाटिका, याददाश्त कम होना, पार्किंसन डिसीज आदि समस्या के समाधान के लिए सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर नीलेश गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरोफिजिशियन से। ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन है 27 जुलाई सोमवार अपराह्न 1:15 समय। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

संवेद स्वरम में आप सुन रहे थे देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम, प्रस्तुत कर रहे हैं मृदुल कुमार पांडे। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अपने ही पसंद के लोकगीत मन भावन क्रम में।

सब भैयान को हमारी राम राम। भैया खरीफ फसलन में नियंत्रण को हाथे खरपतवार के नियंत्रण के काजें निराई गुड़ाई फसल चक्र अपनानो और रासायनिक दवान को उपयोग मुख्य तरीका है। बुवाई के बाद के शुरुआती 2 से 6 हफ्ता फसल को खरपतवार मुक्त रखना सबसे जरूरी हुए है, क्योंकि ज्या दौरान घास जैसे सावा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे कनकवा और मोथा फसल की पैदावार को 25% से 40% तक घटा सके है। जाके जो नियंत्रण के तरीका हैं उनमें यांत्रिक व शारीरिक विधि, जामे खेतन की जुताई करना हाथते या खुरपी के समय पर निराई करना और साफ सुथरे बीज बोनो। दूसरा तरीका है संवर्धन विधि को, जा विधि में सही समय पे बुवाई उचित पौधे ते पौधे की दूरी और फसल चक्र अपनानो ताकि खरपतवार बढ़ने न पाए। रासायनिक विधि में

अनुशंसित खरपतवार नाशकन को प्रयोग करना। मक्का में भैया बुवाई के 3 दिन बाद एट्राजीन 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर को छिड़काव असरदार हुए है। जाई तरह अन्य फसलन में पेंडोथलीन या बुवाई के बाद की दवाएं उपयोग करी जाए हैं। भैया खरपतवार फसलन के संग प्रकाश, मिट्टी, पानी, पोषक तत्व और हवाते प्रतिस्पर्धा करके पैदावार में भारी कमी लामे हैं। उपज को कम करवे के अलावा खरपतवार कीटाणु और कीटन को आश्रय प्रदान करे हैं, जो फसल में रोग पैदा करे हैं। जा वजह से खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है, जो कि विभिन्न क्रियान के माध्यम से कियो जा सके है। भैया आज दिना है मन भावन को कार्यक्रम को सुनवाए रहे हैं जी पहलो लोकगीत मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में। भैया सुनो।

मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में भैया सुन रहे हैं जी लोकगीत। भैया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा कीट और रोग या काऊ तरह ते फसल खराब हेवे की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करे है, ताकि किसानन की आय को स्थिर रखने में मदद मिल सके, जाते खेती में निरंतरता सुनिश्चित और किसानन की आय स्थिर बनी रह सके है, जाके माध्यम से किसानन को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धति को अपनावे को प्रोत्साहित कियो जाए है। भैया, कृषि क्षेत्र को ऋण को प्रवाह सुनिश्चित करना हूँ जाको प्रमुख उद्देश्य है। जाके पात्र किसानन की बात करी जाए तो अधिसूचित क्षेत्रन में अधिसूचित फसल उगाए बारे पट्टेदार जोतदार किसान सहित सभी किसान बीमा कवरेज को पात्र हैं। जय योजना के तहत किसानन द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त प्रीमियम खरीफ की सभी फसलन को 2% और रबी फसलन को 1.5% है। वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलन के मामले में बीमा किस्त 5% है। किसानन द्वारा भुगतान करी जाने वाली प्रीमियम दर बहुत कम है और प्राकृतिक आपदान के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ किसानन को पूरी बीमा राशि प्रदान करवे को शेष प्रीमियम को भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। भैया, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात और कीटन के हमले ते नुकसान की भरपाई जा बीमा के माध्यम ते होए है। फसल के नष्ट हैबे पे सीधे किसानन के बैंक खाते में बीमा दावे की राशि भेजी जाए है। भैया, आगे बात करेंगे आवेदन करवे की प्रक्रिया के बारे में। पहले सुन लें हैं जी लोकगीत डोरीलाल गोला के स्वर में।

भैया ने सुनो जी लोकगीत, स्वर दियो हो डोरीलाल गोला ने। भैया बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो भैया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल पर जाके फार्मर कार्नर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कियो जा सके है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात, जन्म खसरा खेवट नंबर हो और बुवाई को प्रमाण पत्र आवश्यक है। जाके अलावा नज़दीकी जनसेवा केंद्र, बैंक शाखा या कृषि समिति के माध्यम से हो आवेदन किया जा सके है। तो भैया जी बात ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, अब सुनो जी लोकगीत।

सरल कौल के स्वर में अवई भैया सुन रहे हैं जी लोक गीत। घनश्याम शर्मा मधुप के स्वर में प्रस्तुत है जी अगलो लोकगीत।

भैयान ने आनंद लियो जालो गीत को, स्वर दियो हो घनश्याम शर्मा मधुप ने। दामोदर शर्मा के स्वर में सुनो जी अगलो लोकगीत।

दामोदर शर्मा के स्वर में भैया ने आनंद लियो जा लोकगीत को। जाई के संग आज के जा मनभावन को यहीं पे दें हैं विराम। सब भैयान को हमारी राम राम।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम था गंगा सागर। फिल्म का नाम था क्षमा कीजिए गंगा की सौगंध। और आइए अब सुनते हैं रविंद्र जैन और साथियों को फिल्म गंगा सागर में।

0: आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को, फिल्म का नाम था शिव महिमा। संध्या वंदन कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नागर कृत उद्धव शतक की संगीतमय प्रस्तुति। संगीत संयोजक सुरेश गुप्ता, प्रस्तुतकर्ता मोहित कुमार।

और उनके आंसुओं की धारा में हमारा सारा ज्ञान बह गया। उनके अत्यधिक दुखों के धक्कों से हमारा ज्ञान अभिमान चूर चूर हो गया प्रभु, चूर चूर हो गया, तथा उनकी विरह की तीव्र अग्नि में जलकर हमारी सारी चतुराई भस्म हो गई प्रभु, सारी चतुराई भस्म हो गई।

हे श्री कृष्ण, आपके द्वारा भेजे हुए हम ज्ञान योग तथा निर्गुण के बड़प्पन की शिक्षा देने के लिए गए थे। गोपियों की अपार विरहाग्नि एवं वियोग विकल दशा को देखकर न जाने कहां हमारी सारी चतुराई खो गई। उनकी दीर्घ निश्वासों ने हमारे ज्ञान को उड़ा दिया

उद्धव जी मथुरा लौटकर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, ब्रजभूमि का मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि हम तो कहीं यमुना के रमणीक किनारे पर कुटिया छा लेते

और वहां की रमण रेती से कहीं भी गमन न करते। रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव ने आगे कहा, गोपियों की प्रेम गाथा को ही गाते और उसी को सुनते, इसे छोड़कर हमारे कानों और जिभ्या को दूसरा रस भाता नहीं, अर्थात कानों से केवल प्रेम की कहानी सुनते तथा जीभ से गोपियों के प्रेम की कहानी कहते, अन्य किसी रस की इच्छा ही नहीं होती प्रभु। उद्धव जी आगे कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, गोपियां तथा ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर तथा प्रलय का आना समझकर हम तनिक भी भयभीत न होते। यदि हमारे मन में आपको वहां की दशा बताकर सचेत करने का भाव न होता तो हम ब्रजगांव को छोड़कर इधर मथुरा की ओर कभी पैर भी नहीं रखते। हे प्रभु, केवल आपको गोपियों की विरह दशा बताने के लिए ही मुझे मथुरा आना पड़ा है, अन्यथा मैं उस ब्रजभूमि को छोड़कर कभी इधर कदम भी नहीं रखता।

0: रीमा सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: Hey guys,
5: hey, congratulations.
4: आज तो पार्टी चाहिए।
5: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
6: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
4: पिज्जा पार्टी। चल अपना कार्ड और पिन दे।
6: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
4: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
6: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा रक्षा, निर्यात और राजनीतिक सहयोग में नई ऊंचाइयां छू रहा है देश। आकाशवाणी पर मन की बात में कारगिल शहीदों को भी किया याद। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने को बताया अद्भुत जनशक्ति। बिजनौर की महिलाओं द्वारा तैयार की गई विदुर चाय का भी किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। इटावा और मैनपुरी में विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और पीलीभीत में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कासगंज से लखनऊ के ऐशबाग तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
8: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
7: देशभर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
8: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान

0: करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है।
0: एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहाँ एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है।
1: प्रधानमंत्री ने बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के द्वारा तैयार चाय का जिक्र करते हुए कहा कि इस चाय ने सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है।
0: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई।
1: प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी आज बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: प्रदेश में पिछले दिनों चलाए गए माँ के नाम एक पेड़ अभियान की प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में सराहना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके प्रति आभार जताया है। श्री योगी ने कहा कि इस अभियान में एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने का जिक्र पर्यावरण संरक्षण, सामूहिक चेतना और जनभागीदारी की बड़ी सफलता का सम्मान है। वहीं बिजनौर जिले की महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा हर्बल टी तैयार किए जाने की तारीफ किए जाने पर समूह की महिला सदस्य ने प्रसन्नता व्यक्त की है।
2: बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं। जैसा कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने हमारी विदुर हर्बल टी के बारे में बात की है, इससे लग रहा है कि जैसे जितनी भी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं उन सब के मन की बात कर दी है। जो प्रोडक्ट्स हैं विदुर हर्बल टी और या विदुर से जुड़े हुए और जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनको एक नेशनल मार्केटिंग मिलेगा और उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो हम लोग सभी दीदियां बहुत खुश हैं कि अब हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग और बढ़ जाएगी, हमारी आजीविका में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1.5 से 3 करोड़ रुपए तक की एक्सीडेंटल बीमा कवर योजना का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से विश्वविद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों के 1,28,000 शिक्षकों और उनके परिवारजनों को लाभ मिलेगा। कैशलेस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार उनकी क्षमताओं को निखारने में सक्रिय भूमिका निभाएं। श्री योगी ने कहा कि बदलते दौर में सोशल और डिजिटल मीडिया के सही उपयोग की जरूरत है।
3: राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 12 डिग्री को आप लेने की सामर्थ्य रख सकते हैं और देने की सामर्थ्य रखते हैं। हर शिक्षक के लिए, हर छात्र के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसको पारंगत करेंगे। हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कैसे हम उस फील्ड में अपनी धमाकेदार उपस्थिति के माध्यम से उसको अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप, समाज के अनुरूप और देश के अनुरूप बना सकते हैं।

0: मुख्यमंत्री ने आज मैनपुरी में 682 करोड़ रुपए की 111 विकास परियोजनाओं और इटावा में 604 करोड़ रुपए की 128 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि भाजपा सरकार में पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए युवाओं को बिना किसी सिफारिश और रिश्वत के नौकरी मिल रही है। बदायूं जिले के उजानी रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा ने कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले रेलवे परिसर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं पीलीभीत के पूरनपुर रेलवे स्टेशन से केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें प्रदेश सरकार जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। इससे पहले सरकार ने नई विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन कर दिया है। इसमें 3 सदस्य हैं। इसकी कमान आईजी लखनऊ रेंज किरण एस को सौंपी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने साल 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को अपना आवेदन संबंधित अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य को 5 अगस्त तक देना होगा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी भाग में कई स्थानों पर मेघ गर्जन और बिजली के साथ कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वांचल में कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का ये क्रम 31 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा, निर्यात और राजनीतिक सहयोग में नई ऊंचाइयां छू रहा है देश। आकाशवाणी पर मन की बात में कारगिल शहीदों को भी किया याद। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने को बताया अद्भुत जनशक्ति। बिजनौर की महिलाओं द्वारा तैयार की गई विदुर चाय का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। इटावा और मैनपुरी में विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा और पीलीभीत में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कासगंज से लखनऊ के ऐशबाग तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कार्यक्रम शाम सुहानी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ब्रजांचल में आजकल गुरु पूर्णिमा, मुड़िया पूर्णिमा का मेला चल रहा है। इस मेले में दूर दराज से अनेकों श्रद्धालु मथुरा नगरी, बरसाना, नंदगाम, वृंदावन, बलदेव आदि में पधारे हैं। हम सबका ये परम कर्तव्य है कि उनका दिल जीतें, उनको कोई परेशानी ना हो। शासन प्रशासन के साथ साथ हम सब भी उनका ख्याल रखें। ये तो बात हुई कुछ गुरु पूर्णिमा के बारे में। और अब हमारे पास जो संदेश मिला है SM जावेद, शगुफ्ता और अंजुम का, गुमला झारखंड से।

दोस्तों आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था प्रेम रोग। अब हमारे पास बहुत से संदेश हमें मिले हैं। लॉयर्स कॉलोनी मथुरा से ब्रजेश कुमार गौड़,

प्रकाश गौड़, मुकेश गौड़, प्रदीप गौड़, राजेंद्र कुमार शर्मा, सुरेश चंद शर्मा, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा और इनके परिवारीजन, अनारकली बाजार जगराव से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मेहलोत्रा, गभया मेहलोत्रा, भाई सुच्चा पाठक, विनोदपुरी, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, आमना आसमा परी, इकबाल अहमद फूल वाले और इमरान अहमद। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू। सामली सलोनी तेरी झील सी आंखें फिल्म का ये गाना आप सुनना चाहते हैं और सुनने वाले हमारे श्रोता हैं अमजद अली, लाडली बेबी, निशा और इनके परिवारीजन। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, राज पैलेस मऊ नाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, कबीर नगर लोनी से नसीमुल इस्लाम कुनौरी और दानिश कुनौरी। आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

महेंद्र कपूर को आप सुन रहे थे फिल्म हमराज में। गांव गोपी की नगरिया से मिठ्ठल लाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा, गांव नगला पोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन, भोला, रघु और इनके परिवारीजन, गांव नौघर्रा से कोमल मास्टर, जसूदा, रोहित, मंजना और उनके मम्मी पापा, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, शिवांश, शिवांगी, चुन्ना और इनके मम्मी पापा। और ये संदेश हमें मिले हैं गांव हाडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, गन गोला दातागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रोहूब खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान, गार्डन रोड पैरटसे से बाबा साहेब सरगर, ज्योति, शुभम और महेश, मोताला महाराष्ट्र से ब्रजेश सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती।

गौरी और कुमार। ओम कुमार, आरती कुमारी, विद्या कुमारी, आराध्या, कुमकुम, विजय, महाराष्ट्र से। श्रीमती लक्ष्मी समर्थ दादा और कुमारी सानिका, धबड़ गांव, महाराष्ट्र से। बबलू ठेकेदार शेख सागिर, शेख वजीर, सोहिल, सैयद, शामिर और अलजान, मोताला बाजार से। रमेश कुमार साहू, अंतरा देवी, प्रभा मिश्री देवी साहू, तख्तपुर छत्तीसगढ़ से। शनि चौक खंडवा से उमा राज, कुलदीप राज, जगदीश राज और प्रभा। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह, लोहो गढ़ ठाकुरा बाला से। अनिल बराड़े, उषा बराड़े, अनुश्री, धनुश्री, सूरज, प्राची और एकलव्य, पांडर कबड़ा से। आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

0: और अब आज का शाम सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
1: Thank you.

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपेंद्र को। फिल्म का नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। और आइए आप सुनते हैं फिल्म सुहाग का ये गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं देशगान।

सांबेश्वरम में अभी आप सुन रहे थे देशकान। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रजभूमि फिल्म के कुछ गीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: रविंद्र जैन और साथियों को अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज आपने इस कार्यक्रम में ब्रजभूमि फिल्म के कुछ गीत सुने। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। 8:45 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
3: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं के

0: विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह 4 बजे पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी

0: के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
3: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से उड़ीसा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल

0: से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Diwas. Prime Minister Modi urges citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event. And Rishikant Singh Chanambang bagged silver in the men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somanath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities. Mr. Modi reaffirmed the government's commitment to protecting the integrity of competitive examinations and safeguarding the future of millions of students.
3: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
2: Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, food and public distribution, and new and renewable energy. Later, speaking

आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को फिल्म साजन में, और आइए अब सुनते हैं हिमालय की गोद में फिल्म का गीत। आवाजें हैं मुकेश की।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और मुकेश को। फिल्म का नाम था धर्मवीर। सुहाने तराने का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रादेशिक लोकगीतों के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर विशेष लोकगीत कार्यक्रम सबरस के तहत। सबसे पहले आइए सुनते हैं ये अवधि लोकगीत। कलाकार हैं राम कैलाश।

आपने सुना डोरीलाल गोला के स्वर में ये लोकगीत, और आइए अब सुनते हैं ब्रजेंद्र गोला के स्वर में ये लावणी।

आप सुन रहे थे ममता भारद्वाज को स्वर में ये लोकगीत, और आइए अब सुनते हैं लावणी। कलाकार हैं विष्णु शर्मा। आप आनंद ले रहे हैं सबरस कार्यक्रम का आकाशवाणी मथुरा केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे विष्णु शर्मा के स्वर में लावनी। इसी के साथ आज का सबरस कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज आपने अवधी लोक की सुना, लावनी सुनी और ब्रज लोक की सुनी। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा के आज के इस गरिमामय समारोह में हम भारत की प्रथम महिला संतूर वादिका विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी, जो कि सूफियाना घराने की एकमात्र ऐसी भारतीय महिला कलाकार हैं जिन्हें संतूर वादन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, का संतूर वादन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
2: नमस्कार। इन टुडेज प्रेस्टिजियस प्रोग्राम ऑफ द अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, we are going to present a santur recital by India's first female santur maestro, Vidushi Dr. Varsha Agrawal, who is the only Indian female artist of the Sufiana Gharana to achieve international acclaim in santur playing.
1: Dr. Varsha ji ne gayan aur tabla ki shiksha matra 6 varsh ki ayu mein prarambh ki thi aur aage chalkar prakhyat tabla vadak Pandit Lalit Mahant ji se sangeet ka gahan margdarshan prapt kiya। आप प्रख्यात संतूर वादक पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी की गंडाबद्ध शिष्या हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में संतूर वादन हेतु आमंत्रित की जाने वाली देश की पहली महिला संतूर वादिका का गौरव भी रखती हैं।
2: डॉक्टर वर्षा जी बिगन हर ट्रेनिंग इन वोकल म्यूजिक एंड तबला एट द मेयर एज ऑफ 6 and later received profound musical guidance from the renowned tabla player Pandit Lalit Mahant ji. She is a Gandaban disciple of the eminent santur maestro Padma Shri Pandit Bhajan Sopori ji. Along with being a top grade artist of All India Radio and Doordarshan, she also holds the proud distinction of being the first female santur player of the country to be invited by the Ministry of External Affairs for santur concerts abroad.
1: वर्तमान में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय उज्जैन में संगीत प्राध्यापिका के रूप में सेवारत डॉक्टर वर्षा जी को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित शिखर सम्मान सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है।
2: करंटली सर्विंग एज अ प्रोफेसर ऑफ म्यूजिक एट द गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी उज्जैन, Dr. Varsha ji has been honored with several national and international accolades, including the First Lady Award by the Honorable President of India and MP Government Shikhar Samman also.
1: Vidushi Varsha Agrawal, भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत का एक ऐसा ही प्रतिष्ठित नाम है। संतूर के शततंत्री तारों पर उनकी उंगलियां जब थिरकती है तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। अपनी अनवरत साधना, लयकारी पर अद्भुत पकड़ और प्रतिष्ठित मंचों पर दी गई अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने संतूर वादन के क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
2: विदुषी वर्षा अग्रवाल इज वन सच एमिनेंट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। व्हेन हर फिंगर्स डांस ऑन द 100 स्ट्रिंग्स ऑफ संतूर, द लिसनर्स आर लेफ्ट स्पेलबाउंड। थ्रू हर रिलेंटलेस डेडिकेशन, रिमार्केबल कमांड ओवर रिदम एंड मेलोडियस परफॉर्मेंसेस ऑन प्रेस्टिजियस स्टेजेस, she has left an indelible mark in the field of santur playing.
1: Vidushi Dr. Varsha Agrawal apne santur vadan ki shuruaat raag jhinjhoti se kar rahi hain. Isme ve aalap, jod aur jhala ki pashchat vilambit gat jo trital mein hai, madhya gat ek taal mein aur drut gat teen taal mein prastut karengi. Aapke saath tabla par sangat kar rahe hain Pandit Hitendra Dikshit.
2: Vidushi Dr. Varsha Agrawal is beginning her santur recital with Raag Jhinjhoti. In this, after the alap, jod and

झाला, शी विल प्रेजेंट अ विलंबित गत इन तीन ताल, अ मध्य गत इन एक ताल एंड अ ध्रुत गत इन तीन ताल. अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज पंडित हितेंद्र दीक्षित.

0: विदुषी वर्षा अग्रवाल अब प्रस्तुत करने जा रही है राग किरवानी। इसमें वे आलाप के पश्चात मध्यगत जो रूपक ताल में और द्रुतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी।
1: यू जस्ट लिसन टू द संतूर रेसाइटल इन राग झिंझोटी बाय विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल इज नाउ गोइंग टू प्रेजेंट राग किरवानी। इन दिस आफ्टर द आलाप शी विल प्रेजेंट अ मध्यगत इन रूपक ताल एंड अ द्रुतगत इन तीन ताल।

0: ये था विदुषी वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत राग किरवानी। विदुषी वर्षा अग्रवाल अपने कार्यक्रम का समापन एक मिश्र राग आधारित मधुर धुन से कर रही हैं।
1: That was राग किरवानी presented by विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल is concluding her performance with a melodious धुन based on a मिश्र राग।

0: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत ये थी मिश्र राग पर आधारित मधुर धुन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित हितेंद्र दीक्षित। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was a melodious धुन based on a मिश्र राग presented by विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। Accompanying her on the tabla was Pandit Hitendra Dikshit. This program was presentation by All India Radio, Indore. With

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल हैं। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination